और अगर हम इन पर रहम करें और जो तकलीफें इनको पहुंच रही हैं वो दूर कर दें तो ये अपनी सरकशी पर अड़े रहें और भटकते फिरें, और हमने इनको अजाब में भी पकड़ा तो भी इन्होंने अल्लाह के आगे आजिजी न की और ये आजिजी करते ही नहीं, यहां तक कि जब हमने इन पर अजाब शदीद का दरवाजा खोल दिया तो उस वक्त वहां नाउम्मीद हो गए। और वही तो है जिसने तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए लेकिन तुम कम ही शुक्र करते हो, और वही तो है जिसने तुमको जमीन में पैदा किया और उसी की तरफ तुम सब जमा होकर जाओगे, और वही है जो जिंदगी बख्शता और मौत देता है, और रात और दिन का बदलते रहना उसी का तसर्रुफ है, क्या तुम समझते नहीं।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
5: Dawa. समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में अमरीकी सदर चयो आहे त ईरान के आगाह करे छॾियो आहे त जंग बदी खत्म थी चुकी आहे। ईरान मुखे कत्ल कराइण में कामयाब थी वियो त उन जा संगीन नतीजा भोगींदो। ईरान सां टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। मसइले जे सफारत हल लाइ पुरज़म आहियूं। अमरीकी अमलदारनि जी दावा। अमरीकी मीडिया मूजिब तहरान ऐं वाशिंगटन में टेक्निकल सतह जूं ॻाल्हियूं जारी आहिनि। पाकिस्तान समेत सालिस मुल्कनि में शिकत आणण जे ख़ात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करे छॾियूं आहिनि। सालिस मुल्क

0: चौवीह कलाकनि दौरान वधीक 17 दहशतगर्द मारिजी विया। पंजनि ॾींहनि दौरान मारिजी वियलनि जो अंगु 79 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि 5 जुलाई खां शुरू कयल ऑपरेशन शुभान ऐं ॿियनि कार्रवाइयुनि में मजमूई तौर ते 19 दहशतगर्द मारिया विया आहिनि। दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फिज़ाई कार्रवायूं जारी आहिनि। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां कामयाब ऑपरेशन ते सदर आसिफ अली ज़रदारीअ चयो त पाकिस्तान जी कामयाब सफ़ारतकारी दुश्मन खां बर्दाश्त। पाकिस्तान ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ खे इस्तेमाल कंदड़ कॾहिं बि कामयाब न थींदा। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ चयो त कंहिंखे बि बलोचिस्तान जो करण ॾिनी पारां पटे छॾींदासीं, पूरी क़ौम बहादुर फोर्सेस सां गॾु बीठल आहे।
1: जूनियर साइंस टीचर के लिए खुशखबरी यह है कि हम जूनियर साइंस टीचर जितने हमारे बच्चे पास हुए हैं हम इंशाल्लाह। मेन इशू था जेई के हवाले से ये उस पर बहुत डिस्कशन हुई, उस पर एक कोर्ट का केस आ गया है जिसकी वजह से कमेटी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट की है कि इस कोर्ट के केस का ओपिनियन कौन बना, उन पे ये फर्ज हो का कोई
2: आएंगे तो लोग पूछेंगे हमसे सवाल कि आपने उस वक्त ये फैसला क्यों किया।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर किड्स।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जुड़ियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
2: GFM 91.6।
5: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: आप सुन रहे हैं
2: DAFM 88
1: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
2: जी हाँ,
3: फकीरी महेश कश
2: फकीरमेंट,
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द

0: सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
0: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
0: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार,
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: एंटरटेनमेंट पर।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर.
1: It's 10:45 a.m.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खूबसूरत नमूने मानू ताई वने तो तवा इन ते जेकर ईम अन्या असा में ईम बयान कर सकूं था सजा ब जरिया एकड़ो जेंके तवा तालीम
4: करो
3: जो लर्निंग नेचर जेको मानू जे वट पंज ही हवास चार टे जेतरा बनो जैसे घटे में गुजरे तो गले में वे तो हल तो कुछ न कुछ बुध तो वे तो सीखने जो अमल सारी जिंदगी रहे तो फॉर्मल

छहनि महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडूं जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आम्हूं साम्हूं। नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवान इरफान अली कीरियो, मोहम्मद हारून खोसो, मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर हुसैन शर में मुक़ाबिलो। पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे। सिटी कोर्ट में ॿ डिजिटल पोलिंग स्टेशन

0: नवे डिजिटल बूथ कायम कया वया। 90,000 खां वधीक रजिस्टर्ड वोटर्स बायोमेट्रिक में घटजी 5,500 थी विया आहिनि।
1: ऐं टंडो गुलाम हैदर में फुलेली कैनाल मां निकिरंदड़ शाहवाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। हैदराबाद बदीन रोड ते धरणे सबब गाॾियुनि जूं डिघियूं कतारूं लॻी वयूं। आबादगारनि जो चवणु आहे त पाणी न हुअण सबब पोखियल बेजारो सड़ी वियो आहे, पूछड़ ताईं पाणी पहुचायो वञे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान है?
4: दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासर जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क,
2: GFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: की जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना। कोई
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।

पागल। देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It's 12 PM. This time check is brought to you by
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
5: मटियारी के हो तो आवाज भी GFM 91.6।
6: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
7: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
6: अब दर्द को कहें अलविदा
7: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
6: जी हाँ,
7: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
6: ऑइंटमेंट।
7: ये ऑइंटमेंट दर्द, सोजिश
6: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
7: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
6: गर्दन और कमर की तकलीफ,
7: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
6: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
7: और जल्दी जलन में मुफीद।
6: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
7: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
6: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
7: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जेता फौज के यकीनी बनाए रही आहे ईरानी क़ौम खे पंहिंजे फौज ते फ़ख़्रु आहे।
1: ईरान ऐं अमरीका विच में ॻाल्हियुनि जो ईंदड़ दौर स्विट्ज़रलैंड में थियण जो इम्कान। अमरीकी मीडिया मान सऊदी अरब, कतर ऐं मिस्री अख़्तियारनि अमरीकी ऐं
0: सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फौज खे हुकुम। न्यूयॉर्क टाइम्स खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सालनि खां मूंखे निशानो बणाइण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरान जेकॾहिं मूंखे क़त्ल कयो या साज़िश कई त फौज खे सख़्त जवाब ॾियण जो हुकुम ॾेई चुको आहियां। अमेरिकी फौज ईरान ते 1000 मिज़ाइल फायर करण लाइ तयार आहे। तेहरान खे साज़िश तां पोइते हटणो पवंदो।
1: का बि जंग ईरान जे हथियार फिटा करण सां ख़तम न थींदी, पोइते न हटंदासीं। अमरीका मुआहिदो टोड़ियो त ज़िमेवार पाण हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चयो आहे त जंग लाइ हर वक़्त तयार रहंदड़ मुल्क ई अमरीका सां मुयसर ॻाल्हियूं करे सघे थो। परडे॒ही वज़ीर अब्बास राक्ची जो चवण हो त अमरीका खे ॻाल्हियूं जारी रखण जी दरख़्वास्त नाहे कई। ईरान मफ़ाहमती याददाश्त नामे ते अमल कयो आहे। अमरीका सां मुआहिदो गडि॒यल बुनियादनि ते ई थी सघे थो।
0: सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्तो। ॿिन तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाणनि अमेरिका ऐं ईरान विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो बि जाइज़ो वरितो। ॿिन्ही अॻवाणनि बहिरी रस्तनि जी हिफ़ाज़त ऐं आज़ाद चुरपुर ऐं खिते जी सिक्योरिटीअ खे हथी ॾियण वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरियो।
1: फिरियालो वेझो कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो। हिकु ॼणो क़त्ल, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठु ॻहणो कलोड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरनि में झेड़ो थी पियो। गोलियूं लॻण जे नतीजे में रहीम बख़्श कलोड़ो क़त्ल थी वियो। हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। हिकु ॼणे जी क़त्ल बाद धुरनि में तकरार तेज़ थी वियो। इलाइक़े में ॾकाओ।
0: छह महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडूं जारी। सदारती उमेदवार आमिर नवाज वड़ाइच जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आमो साम्हूं। नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवान, इरफान अली कीरियो, मोहम्मद हारून खोसो, मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर हुसैन शर्मे मुक़ाबिलो पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे।

0: वाह में पानी अबादगारन जो धन हैदराबाद बदीन रोड ते धरणो हुयो। अबादगारन जो चवण हो तो पानी न होण सबब पोखियल बेजारो सड़ी वयो आहे, जमीनू बे सुकी ठोट थी वयूं आहिनि, पूछड़ ताई पानी पहुचायो वञे।
1: मटियारी जे इलाइक़े सेखाट भरसां ॻोठ दीन मोहम्मद जत में घिटीअ जे मामले तां ॿिनि जेड़ धुरिन में जेड़ो लठियूं ऐं कुआड़ियूं लॻण सबब नींगर समेत ॿ ॼणा रतो रत, ज़ख़्मियुनि में फरमान जत ऐं इंतज़ार जत शामिल। ज़ख़्मियुनि जो चवण आहे त घिटीअ जे मामले तां खेनि हमिलो करे ज़ख़्मी कयो वियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद।
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
5: आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: पहले उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: एम दिस टाइम
1: ऑइंटमेंट
2: दे
1: नाम लेकर तलब
4: सुनेंगे KTN
5: जारी ऑपरेशन शो
4: GAFM नेटवर्क पर।
6: छिकटाण में बाद अमेरिका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वे जो मुकरर करे छिया यूएसएस इब्राहिम यूएसएस चार्ज ईरान सेनेट का वी का वधिक जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त करे रहा है। फौज अमती है अवाम के यकीनी बनाए रही है। ईरानी कौम के पैंजी फौज से फखर है।
5: ईरान ए अमरीका विच में गालिन जो ईंदड दौर स्विट्जरलैंड में थियण जो इम्कान। अमरीकी मीडिया मूजिब पाकिस्तान सऊदी अरब कतर ए मिस्री अख्तियार अमरीकी ए ईरानी अख्तियार से राबता कर छिकताण खत्म करण ते गालबोल की है। जै बाद बिन्हीं मुल्क एक बे ते हमला भी बंद कया।
6: मुख्य कतल कयो वने त ईरान के धरती तां मिसारे छजो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फौज के हुकुम। न्यूयॉर्क टाइम्स के डिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप है ईरान सालन का मुख्य निशानो बनाने की कोशिश कर रो है। ईरान जैसे मुख्य कतल कयो या साजिश कई तो फौज के सख्त जवाब डेण जो हुकुम दई चुको आया। अमेरिकी फौज ईरान ते 1000 मिजाइल फायर करण लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोएते हटणो पवंदो।
5: काब जंग ईरान जी हथियार फिटा करण सा खत्म न थींदी पोएते न हटंदासीं। अमेरिका मुआहिदो टुड़ियो त जिम्मेवार पाण हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ जो चवण हो त जंग लाइ हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्की अमरीका सां मौसर ॻाल्हियूं करे सघे थो। परडेही वज़ीर अब्बास राखी चयो आहे त अमरीका

0: के ॻाल्हियूं जारी रखण जी दरख़्वास्त नाहे कई। ईरान मफ़ामती यादाश्त नामे ते अमल कयो आहे। अमरीका सां मुआदो गॾियल बुनियादनि ते ई थी सघे थो।
1: सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सां राब्तो, बिन तरफ़नि लाॻापन समेत खिते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं, ॿिन्ही अॻवाननि अमेरिका ऐं ईरान विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो बि जाइज़ो वरितो। ॿिन्ही अॻवाननि बहिरी रस्तनि जी हिफ़ाज़त ऐं आज़ाद चुनपुर ऐं खिते जी सिक्योरिटीअ खे हथी ॾियण वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरियो।
0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि तां ॿ ॼणा क़तल, प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो थी पियो, हिकु ॼणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी थी पियो। ॻोठ गहणो कलोड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरनि में झेड़ो थियो। गोलियूं लॻण जे नतीजे में रहीम बख़्श कलोड़ो मारिजी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। दरिया ख़ान मरी वेझो बि ॻोठ आदम लाशारीअ में नौजवान जो गोली लॻल लाश हथ, नौजवान इम्तियाज़ लाशारीअ जो गोली लॻल लाश ॻोठ भरिसां ज़मीन तां मिलियो। पुलिस क़तल जे शक हेठि टिनि ॼणनि खे गिरफ़्तार करे वरितो।

0: को लगे हाथ आप शेयर और लाइक कर दिया करें। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा अज टॉपिक एतरो थदो छो आछो तज मां पान थदी लगी पई आया समझो था। और जी हमारे साथ अदील कहते हैं टॉपिक थदी बोतल एंड मिठाई। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ए मंसारी कहते टॉपिक पे दोस्त खे छो जो दोस्त ही त आइसक्रीम खाराइंदो अगर दोस्त न खाराए तो पोइ छा कंदा। अॼुकल्ह दोस्तनि ते एतिरो ट्रस्ट न कंदा कयो बाबा। और चाचा ख़ालिद कहते गर्मी में बि दोस्त खे सिलेक्ट कंदासीं पर दोस्ती बेवफ़ा आहे ख़ासि करे लाड़काणी जा माण्हू। इहो टॉपिक आंसर सिधो बेटा लाड़काणी जा माण्हू बेवफ़ा आहिनि लॻे थो तव्हां वफ़ादार माण्हुनि सां टकरिया कोन आहियो। उन खां अलावा शबीर मलिक हमारे साथी जी ख़ुशामदीद करते हैं आपको भी। और मोहम्मद ज़मान कहते हैं स्वीट बुआ जी आई सिलेक्टेड आइसक्रीम चैलेंज चैलेंज आइसक्रीम। ए मंसारी कहते प्लीज प्लीज सॉन्ग तेरे बिन में यूं कैसे जिया लगाते हैं जी सबके गाने और हुक्म करें। किशोर भाई कहते हैं अब आपका सवाल यूं है कि अगर हम किसी से पूछें जमीन ऊपर है या आसमान तो हर मानू चवंदो आसमान। सुठी गाल है ना हर कंहिंखे हर चीज जी खबर हुजण जरूरी आहे। निधि कहती टॉपिक दोस्त को क्योंकि गर्मी हो या सर्दी दोस्त हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। क्या बात है भाई। और दर्द दिल आ चुकी है वालेकुम असलाम चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक आप बताएं आप कैसी हैं स्वीटी। और हजार भाई कहते हैं दोस्ती यो टॉपिक आंसर क्या बात है भाई क्या बात है यार लगता है दोस्ती को ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। ओके जी लाली लिसनर हमारे साथ मौजूद लाली लिसनर आपको भी खुश आमदीद। और उन खां अलावा तव्हां असांजे प्रोग्राम जी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो ऐं टॉपिक खे फॉलो कयो ऐं मूंखे ॿुधायो त वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि किथे पहुता आहिनि तव्हांजे एरिया में मिलनि था कोन मिलनि था लगायो पिया कोन लगायो पिया इहे उहे ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां शेयर कंदा कयो त अला ॾाढा भला आहियो तव्हां। सो शेयर कयो ऐं जल्दी जल्दी डायल कयो 03-15-799-0595-3715-79-5590. ओके जी टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था उन खां पोइ जल्दी वापसी तव्हां ॾे मोटी थींदो तव्हां कॾहिं न वञो हिते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटा थी। सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाती रहिए और खूबसूरतियां हासिल करती रहिए।
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास GAFM 88 की आवाज
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera Vitamin और Avocado की भरपूर खूबियाँ, जिसके minerals skin में फौरी absorb हो जाएं, skin को fair और fresh बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White H Beauty Cream, glowing skin का राज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ। आवाज की डोर से बंधा हुआ।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

जी बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्रोग्राम सुन रही है जिसका नाम है व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए। और यहाँ पर फहीम शेख कहते हैं कि टॉपिक दोस्त के सिलेक्ट करना सीन छो जो दोस्त दिल जाए भी ॾींदो आहे पखो भी हणंदो आहे कचहरी भी कंदो आहे अकेलो इंसान आइसक्रीम त खाईंदो पर अकेलो बोर भी थींदो। सही आहे भई। अच्छा किशोर भाई कहते हैं मुख्य खबर हुई तव्हांखे ही त खबर हूंदी आहे सब। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद हैं और केरी सकरन से आप हमारा शो सुन रहे हैं वेलकम करते हैं आपको। और शबीर मलिक हमारे साथ हैं शबीर भाई आपको खुशामदीद करते हैं। निदिरी कहती है टॉपिक चंदा दोस्त मुझे दोस्त चाहिए और चाचा खाई वे तो इन नंबर से तुम राबो करीबी जनरल स्टोर से या वरी तुम उनके ऑर्डर कराए सो ठीक है। सो अगर मचक्रिया का तो रहने दे बाकी अगर तुम सीरियसली घुराने चाहो था तो इन नंबर से राबो कर घुराए सो था। और नदड़ी कहती अच्छा जी तुम ठंडी हो मेरे साथ बैठ जाओ क्योंकि मुझे गर्मी लग रही है। ओके ए मंसारी कहते छो जो आइसक्रीम वारो ही दोस्त आ खाराइंदो ऑलवेज वाह वाह यानी के दोस्त भी कर था तो आइसक्रीम वारो हाँ भाई तरक्की आ तरक्की बो ओके जी। शजर अब्बास हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम एंड बोला अस्सलाम मदद कहते हैं क्या सिद्रा जी आप कैसी हैं शो इज सुपर हिट। मुसव्विर अब्बास लाशारी फ्रॉम राजी देरो मेरा दोस्त है बासित अली खान लाशारी। ओके जी आप भाइयों को वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया राजी देरो से आप हमें सुन रहे हैं। उनके अलावा प्रेमचंद भाई है वालेकुम अस्सलाम भाई मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। अच्छा दादा चो किशोर भाई जी दोस्त खां धोखो खाधो आ समझ उनके मानो जी समझ कोन आए बिल्कुल यही गाल है मानो जी समझ हो जा तकते न हो जाऊंगा। और कहते हैं कि तुम मेरे हो ऐसी जिद हम कभी नहीं करेंगे हम तुम्हारे हैं ये हम पूरे हक से कहेंगे वाह वाह। ओके जी पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए। हजार भाई कहते हैं कि हम आपके साथ साथ हैं शो में गुड शो लाजवाब जबरदस्त बेहतरीन माशाल्लाह थैंक यू सो मच हजार भाई। और जी दर्द दिल कहती हैं कि छोड़ो सब वादों को कस्मों को इरादों को तुम आईना देखो और बताओ मेरी पसंद कैसी है सुनो जाना एहसास की दुनिया में तुम मेरी सबसे खूबसूरत मिल्कियत हो। क्या बात है जी क्या बात है बहुत बेहतरीन।

रवि जी, क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना आप सुन रहे हैं यहाँ पर साथ की आवाज में। एक बहुत ही प्यारा गाना हमारी लिस्ट में मौजूद है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज हम साथ का गाना भी सुन लेते हैं। और साथ साथ अरे कोशिश तो कीजिए, आज थोड़े सैड गाने फरमाइश मत कीजिएगा।

अच्छा हजार भाई कहते हैं दोस्ती पर शायरी है, जरूर रीड कीजिएगा। दोस्ती वो अनमोल रिश्ता है जो हर मुश्किल में साथ निभाता है, बिन कहे जो दिल की बात समझ ले वही तो सच्चा दोस्त कहलाता है। वाह वाह वाह वाह। और मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ जी प्लीज मास्टर मंजूर। जी जी मास्टर मंजूर का गाना आज लाजमी चलेगा, आप बस अपनी सीट पर बैठे रहिए। और आपने कहा आई डेडिकेट माई बेस्ट फ्रेंड, ओके जी शौकत अली खोड़ो के नाम, क्या बात है, बायोलेब स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ओके जी वेरी नाइस, जबरदस्त सुनकर अच्छा लगा।

हाँ भाई फहीम, आप टेंशन ना करें, लारकाना वालों के ऊपर कुछ ज्यादा ही इल्जाम लग रहे हैं तो बस आप थोड़ा इग्नोर कर दें। अच्छा, दर्दे दिल की दोस्त भी हमारा शो सुन रही है, बहुत शुक्रिया। दोस्त को जरा मशवरा देंगे, वो वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो खूबसूरती है वो हमेशा के लिए लॉक हो जाए। खूबसूरत आप सारे लोग होते हैं, बस ऐसा सीन बन जाता है कि आपकी खूबसूरती को जरा जरूरत होती है थोड़ी टचअप की। तो अगर आप अपनी खूबसूरती को निखारते नहीं है, खूबसूरती का ख्याल नहीं रखते, तो आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आ जाते हैं। तो उन मसलों को हल करने के लिए, आपकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए, आप लोगों की स्किन को हमेशा तरोताजा, शादाब और दिलकश बनाने के लिए वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अच्छा प्रोडक्ट होना जरूरी है, क्योंकि आप ये डिजर्व करते हैं।

अच्छा, मेरा मूड खराब है तो मैं आपका भी कर दूंगी, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? वैसे हाँ, ये बात है, अगर इंसान का मूड सही ना हो ना तो वो कुछ भी बोल देगा आगे से, तो सही बात है, डरा करे मुझसे। अच्छा आदिल, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए।

जी क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना हमने सुना। और साज जो है ना वो यानी कि बचपन से लेकर ये मेरे फेवरेट है। मैं बिल्कुल छोटी सी थी तब से मैं साज के गाने इतने ही पसंद करती हूँ जितने मैं आज करती हूँ। ऐसा है कि मेरी जो पसंद है ना वो हमेशा सेम ही रहती है। जैसे लोगों की पसंद तब्दील होती रहती है ना, चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ, ऐसा मेरे साथ नहीं होता। अच्छा नदीड़ी कहती है ये सॉन्ग मैंने अपनी कजन की शादी में प्ले किया था, किसी को समझ नहीं आ रहा था बट मैंने फुल एंजॉय किया था। ओके और ये इसके बारे में क्या ख्याल है?

अब ये गाना सुनकर मुझे थोड़ा थोड़ा उस मूवी की वाइब दिला रहा है जिस मूवी में, यानी कि जिस मूवी का नाम ऑब्सेशन है, वो भी ऐसे विश मांगता है तो थोड़ा काम इधर उधर हो जाता है। तो ऐसा है कि मैजिक की बात आजकल जो है ना वो मर्द समाज में पूरा डर का माहौल है।

मुझे यासीन खान हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं, खुश आमदीद कहते हैं। दर्द दिल कहती हैं अलीजा सो रही थी तो मैंने उसको उठाया और कहा सिद्रा आ गई है, शो सुनो, अच्छा किया ना। अरे भाई हाँ, बहुत अच्छा किया आपने, बेचारी को सोने देती वैसे। और कहती हैं दर्द दिल भाई दोनों ने दाहिना, तो मैं जरा कंफ्यूज हो जाती हूँ आप दोनों के मैसेजेस में।

बने शिकारपुर से भूरो भुट्टो हमारा शो जो है वो शौक से सुन रहे हैं, तो उनको भी हम खुशामदीद करते हैं। और एम अंसारी कहते हैं कि मैंने जिस दिन स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की, मैं उसी दिन समझ गया था कि ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हाँ भाई, ये थोड़ा डीप हो गया लेकिन बात सच है।

ओके जी, आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो बताइए विशेष ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल करते करते आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिल चुका है, ये हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि भाई जान आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ये गाना भी मेरा फेवरेट है। आज मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी पसंद के थोड़े से गाने लगाऊं ताकि समझ रहे ना ओके तो इस गाने का नाम इन्ना अप है, इन्ना लिखकर अप लिखेंगे तो ये गाना आपको मिल जाएगा किशोर भाई।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मुल्क में लेकर समूर दहशत गर्दन
2: के तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
3: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास। GAFM।
0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: चुको आया अमेरिकी फौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाए तैयार आहे। तेहरान के साजिश ता पोते हटणो
5: काब जंग ईरान जे हथियार फिटा करण सा खत्म न थींदी पोते कदे बिना हटंदासी। अमेरिका मुआदो टोड़ियो तो जिम्मेवारी पान हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ जो चवण हो तो जंग लाए हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्की अमेरिका से मौसर गालू कर सके तो। परदेही वजीर अब्बास राखची चयो तो अमेरिका के गालू जारी रखने की दरख्वास्त ना कई। अमेरिका से मुआदो गडल बुनियादन से ही थी सके तो। अब्बास राखची मौजूदा सूरत हाल से गालन लाए ओमान पहुंचल।
4: सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प सां राबतो, बिन तरफन लागापन समेत खिते की सूरत हाल से गालू। बिन्ही अगवाणन अमेरिका ईरान विच में हलंदड़ गालन जो भी जायजो वरतो। बिन्ही अगवाणन बहरी रस्तन की हिफाजत ए आजाद चुरपुर ए खिते की सिक्योरिटी के

0: मजबूती ॾियण वारनि कोशिशनि ते ज़ोर भरियो।
1: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि तां ॿ ॼणा क़तल। प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठ ॻहणो कलोड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरनि में झेड़ो थी पियो। गोलियूं लॻण जे नतीजे में रहीम बख़्श कलोड़ो क़तल थी वियो, हिकु ॼणो ज़ख़्मी थी पियो। दरिया ख़ान मरी वेझो बि ॻोठ आदम लाशारीअ में नौजवान जो गोली लॻल लाश हथ। नौजवान इम्तियाज़ लाशारीअ जो गोली लॻल लाश ॻोठ भरिसां ज़मीन तां मिलियो। पुलिस कतल जे शक हेठि टिन ॼणनि खे हिरासत में वठी छॾियो। पुछा ॻाछा जारी।

0: जिकवा वादे गोठ वली मोहम्मद बहन में कारे इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल जवाबदार सदाम बहन नौजवान भाइटी रिहाना के कारे इल्जाम हेठ कतल कयो वाके बाद जवाबदार फरार थी वयो पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वयो आहे संदस गिरफ्तारी लाए छापा हया पया वञन।
1: छहन महीनन खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडूं अॼु जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच जीएम कोराई शाह में चोटी जे मुक़ाबले जा इम्कान। नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद ऐवान,

का भी जंग ईरान के हथियार फिटा करण से खत्म न थींदी पोइते का भी जंग ईरान के हथियार मीरपुर माथिले में हारण हणण गाड़ी के क्रॉस करण ता पोरत के तशद्दुद जो निशानो बढ़ाईंदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल वडेरे हाजी महर मथा सरकारी फिरियाद ते केस दाखिल कयो वियो पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में मुकम्मल तौर ते नाकाम बणियल गाड़ी के हारण डण क्रॉस करण ते वडेरे हाजी महर फहद लगारी के तशद्दुद करे गाड़ी सां घेलियो हो वडेरे हाजी महर जी मेड़ वठी अचण ते पोरत केस माफ कयो हो मीरपुर माथिलो जी अदालत पारा नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाणे ते बासर वडेरे मथा केस दाखिल कयो वियो।

0: घोटकी में नौजवान ज़ाल समेत मोबाइल तो अगवा वालदेन जो एहतजाज बाज़ियाबी जो मुतालबो गोठाणे गुलाम रसूल शेख जो ज़ाल सां गड पुट ए नूह की बाज़ियाबी ला एहतजाज वालदेन मौजूद पुट अली हसन सईदा सां पसंद की शादी कई हुई नारी जा वारिस नाराज हुआ पुट घरवारी के डॉक्टर डां वठी वयो हो बिन्हीं के बाज़ियाब करायो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज दंदा रहो।

0: देखिए यारे मन
1: 1.6। इसका जो इस्तेमाल शानदार और कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहें तो ये जनाब आपको स्किन ब्यूटी क्रीम वाइटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, जो कि आप लोगों के चेहरे के डार्क स्पॉट या फिर आपके चेहरे की डलनेस हो या फिर आपकी स्किन पर जो है ना काफी इस तरह का मसले आ जाते हैं जो कि दूर किए भी नहीं किए होते, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है आपने बहुत से प्रोडक्ट लगा के देखे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। ज्यादातर ऐसा सीन बन जाता है जब आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है या सेंसिटिव स्किन वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि हम क्या करें, हमारे चेहरे पर ये आपकी आंखों के हल्के बढ़ चुके हैं। तो भाई आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल स्टार्ट करना है। और जब आप लोगों को मैं ये बताती हूँ ना कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का आप इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे तो जब वो लोग ये सोचते हैं कि भाई क्या ये सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, तो आप लोगों को बता दें चलूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है ये सिर्फ सेंसिटिव स्किन वालों के लिए नहीं है, इसे सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खास करके वो जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं ना जो थोड़ा सा परेशान होते हैं, उनको समझ नहीं आती कि हम प्रोडक्ट जो है वो लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना बेफिक्र होकर लगा सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश का भी इस्तेमाल करना है। और डी स्किन फेस वॉश अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को बता दें चलूं कि डी स्किन फेस वॉश जो है ये जनाब इसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है जो कि आपकी स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। तो जल्दी से आप सारे लोग जो है वो डी स्किन फेस वॉश का यूज करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि डी स्किन फेस वॉश जो है ना ये इतना आप लोगों को जो ना अच्छी वाली वाइब देगा और अच्छा वाला ये एक प्रोडक्ट है जो कि भाई बहुत प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इसे आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते।

सकते हैं लड़के लड़कियां और टीनेजर्स हैं, एजेड हैं, सारे लोग इस्तेमाल करेंगे और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते रहेंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, इनके लगाने के तरीकेकार भी सरा से आप लोगों को समझा देते हैं। वैसे इतनी कोई मुश्किल बात तो नहीं है, रेगुलर जिस तरह आप कोई भी फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं या क्रीम लगाते हैं बिल्कुल सेम ही तरीके का है। लेकिन ऐसा सीन है कि बहुत से लोग जो होते हैं ना, उनकी थोड़ी सी एक आदत होती है कि अगर वो फेस वॉश हो या फिर साबुन हो उसका इस्तेमाल करने बैठ जाते हैं ना, तो वो एक मरतबा जब आप सुबह को अपना फेस वॉश करते हैं तो आपने साबुन का यूज जो कर रहे होते हैं तो वो 3 से 4 मरतबा भी आप साबुन लगा लेते हैं, फेस वॉश का यूज कर लेते हैं, बार बार आप जो है ना वो फेस वॉश लगा रहे होते हैं, साबुन लगा रहे होते हैं, और आपने सुबह को फेस वॉश किया, दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, यानी कि सारा दिन बस आपका ये जो ना फेस वॉश करने में निकल जाता है। तो बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे, अगर आप इतना ज्यादा फेस वॉश करते हैं तो ये चीज भी आपकी स्किन को खराब करने का बाइस बन जाती है। अक्सर कहते हैं ना कि भाई अगर आप साफ सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं तो साफ सफाई भी जो है ना लिमिट में अच्छी लगती है। इतनी ज्यादा अगर आप अपनी स्किन की केयर करने लग जाते हैं ना, तो आपकी स्किन जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिमिट में अच्छी लगती है। और अगर आप फेस वॉश भी अपना बहुत ज्यादा करते हैं या एक मरतबा आप अपना फेस वॉश करने जाते हैं सुबह को, जैसे आप फर्ज करें फेस वॉश किया तो उसमें आपने जो है ना वो फेस वॉश का यूज किया तो 4 से 5 मरतबा लगा रहे हैं या 3 लगा रहे हैं बार, तो ये भी आप थोड़ा अवॉइड किया करें। 1 से 2 मरतबा आपका जो फेस है ना वो क्लीन हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 मरतबा जो ना वो साबुन का या फेस वॉश का यूज किया करें, 3 से 4 मरतबा 5 मरतबा लगातार आप फेस वॉश मत किया करें। इतना ज्यादा अगर आप इतना ज्यादा फेस वॉश करते हैं तो आपकी स्किन पर जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। जब आपके चेहरे पर नेचुरल ऑयल्स खत्म हो जाते हैं तब आपके चेहरे पर जो ना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इन चीजों को आप अवॉइड करते हैं, इन चीजों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं, तब आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा जो ना वो मसले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप अपनी स्किन का ख्याल रखिए और साथ साथ ख्याल भी उतना रखिए जब रखना चाहिए जितना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने लगातार बस फेस वॉश करते रहना है, आप ये सोचे कि हम तो अपने आप को क्लीन रख रहे हैं। इस तरह का क्लीन भी नहीं रखना चाहिए, क्या कि स्किन जो है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाए उसके ऊपर। तो अगर आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा करेंगे कि डी स्किन फेस वॉश जो है वो सुबह को इस्तेमाल कीजिए, दोपहर को और रात के टाइम, क्योंकि रात का जो फेस वॉश होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप दिन में भी थोड़ा सा आपका फेस वॉश स्किप हो जाता है तो रात का फेस वॉश कभी भी स्किप मत किया करें, वो जरूरी किया करें, क्योंकि रात अगर आप फेस वॉश नहीं करके सोते हैं तो जो पूरी रात होती है ना आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा डस्ट होता है, पोल्यूशन होती है, गंदगी जो जमा हो जाती है पूरे दिन भर की, तो वो रह जाती है। जब रह जाती है तो सारी रात आपके चेहरे पर जब आप सोते हैं तो आपके चेहरे पर जो ना एक्नी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, निशानात पर जाते हैं और ऐसे निशान बन जाते हैं जो भाई कभी नहीं जाते। तो अगर आप भी इस तरह का कोई सीन नहीं चाहते तो रात को अपना फेस वॉश लाजमी करके सोएं और डी स्किन फेस वॉश लगाएं, या फिर आपने जो है ना वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी इस्तेमाल करना है तो फेस वॉश करने के बाद ही आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये तरीकेकार अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यकीनन बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल करते रहिए 03157990595 UDT 315 79 90 595 ही नंबर आ जेको तां जी आसानी जे लाए तां अगर पांजे करीबी जनरल स्टोर्स ते वणो था तो तां उतां वनी आराम सां डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश परचेज करी सको था। ठीक है। सो जनाब प्रोग्राम आहे व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आप इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियां हासिल करते रहिए।

मेरी व्हाइट एश एंड रेस की ब्यूटी आ जाता है और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और फेसबुक पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं क्या करें कि आप हमारी पोस्ट और पोस्ट को लाइक और शेयर करके मैसेज रानी जी फरमाइश किया और मैं कोशिश लगाएंगे और मुन्नों के साथ ही मीरपुर खास एंड बलिका फारूक हैदर जतोई सॉन्ग मास्टर मंजूर।

फहद देरी है, सऊद देरी है, फ्रॉम नवाब शाह सलामती शो तुम्हारा जो नाइस है प्लीज प्ले हूँ मेरा चना हो, मेरा चना जो गानो हलाने की कोशिश कयूं था। अच्छा अच्छा खालिद आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं अज भी गाने की फरमाइश आए, बिल्कुल तुम्हारा गानो हलाइंदी और कहते हैं सॉन्ग की रिक्वेस्ट लिंक तुम्हारा फेसबुक से शेयर कई आज चलो मैं ऐसी बैठा थी। अच्छा इरम कहती है दिलबर आप ही जवाब है, मैं तो आपको ही सिलेक्ट करूंगी यार, आज मैं भी उदास हूँ, बस अल्लाह पाक हम दोनों की उदासी दूर करे, आमीन आमीन आमीन। वरियाम अली कहते हैं सिद्रा हम भी शो सुन रहे हैं आपका प्यारा शो, थैंक यू वरियाम। रसूलाबाद से आबिदा सिंह शंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम, अदी ये क्या अच्छा सच में, चलिए अच्छी बात है, इंजॉय करिए। यासीन गुडाड़ो हमारे सारे सकरण से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, असा ठीक आयो, उम्मीद आए तमाम भी खुश हूँ यार। और कहते टॉपिक असान दोस्त के चूज कदासूं, सिद्रा आज रऊफ मक्सी जो कलाम तो बुधराइंदा प्लीज डेडिकेट बशीर लगारी, चले मां कोशिश क्या थी भा तवाजी फरमाइश भी हलाइंदा। नदीम अली ही हमारे साथ

0: ओके जी नदीम भाई तुम गाने जी फरमाइश कई है ठीक है मैं कोशिश क्या तुम पसंद जगह हलाइंदी प्रोग्राम में और सोनी की आप ही जान मैं भी आ गई आपके शो में कुछ देर के बाद में चलो जी क्या बात है आपकी लाइफ तो मुझे लगता है बड़ी सेट है यानी घूमना फिरना इधर आना उधर जाना ये करना वो करना क्या बात है भाई चलो एंजॉय करें एंजॉय करें और बहुत शुक्रिया अच्छा मोहम्मद जमान लिखते हैं अल्लाह आपके दिल से वो सारी थकन उतार दे जो आपने किसी को बताए बगैर बर्दाश्त की हुई है आमीन जी आमीन इंशाल्लाह और दर्दी दिल कहती है देखो
1: कुछ भी नहीं हो मैनू कह दी मेरा सुर मेरी लय मेरी
0: बस देख ही तो रहे हैं अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई हमारे साथ है दादू से वालेकुम अस्सलाम नाइस यू थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई आपको वेलकम करते हैं आदिल भाई आपके बेटे के लिए बहुत ज्यादा वाली दुआएं करेंगे अच्छा किशोर भाई कहते हैं दिस न तुझी भाभी खंड जा तो खंड जा मैडम खंड जा सब खतरनाक मानू आए ने बेचारो किशोर भाई फांसी वे वास्ते

0: अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मैजिकल टच तो व्हाइटिश लवली क्रीम देगी ना, बिल्कुल जी बिल्कुल देगी, आप इस्तेमाल की नियाज भुट्टो हमारा शिकार पर
1: से क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश कर आप भी सोने भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। अच्छा मोहम्मद मीरन जखरानी भाई हमें सुन रहे हैं, जेकब आबाद से खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई को। अच्छा चाचा खालिद कहते हैं मैजिकल टच तो व्हाइटिश लवली क्रीम देगी ना, बिल्कुल जी बिल्कुल देगी, आप इस्तेमाल कीजिए। और नियाज भुट्टो हमारा शो सुन रहे हैं शिकारपुर से, नियाज भाई आपको भी वेलकम करते हैं। अच्छा सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ ही, हाय सरफराज भाई आपको भी वेलकम करते हैं जी। ओके जी, सो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और बताइए आप कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है ना हम ले रहे हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

0: It's 2:30.
1: Look, skin jaisi hai mein diamond glow bleach cream.
2: Fakiri neem prickly heat soap jaldi infection se bachao ka behtareen zariya hai.
3: Fakiri neem prickly heat soap
2: jaldi allergy aur kharish ke liye mufeed hai.
3: Fakiri neem prickly heat soap
2: jhurriyon, chhaiyon, keel mahason aur garmi daanon se hifazat ke liye.
3: Fakiri neem prickly heat soap garmiyon mein de thandak ka behtareen ehsaas, har roz kudrati nikhar.
2: Fakiri neem prickly heat soap
3: jild ko gehrai se saaf karne, jarasim se tahaffuz faram karne aur garmi ki wajah se hone wali ghumriyon, kharish aur badbuo ko kam karne mein madad deta hai. Fakiri neem prickly heat soap
2: har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Khoobsurti hai jo asal raaz सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में. डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
5: अभी ॿुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़.
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
5: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो.

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: कुछ नॉर्मल नहीं होता और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने दो सालों में।
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

फेयरनेस क्रीम आहे हिन खे इस्तेमाल करे सघो था हर कोई माण्हू लॻाए सघे थो मर्द मायूं सभु लॻायो बाबा ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ खे सेट बणायो छो त वाइट एज लवली क्रीम तव्हां लॻाईंदा त तव्हांजी लाइफ सेट थी वेंदी सो वाइट एज लवली क्रीम लॻायो ऐं सोणा सोणा रहो हुन खां अलावा जेके माण्हू असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा वञनि पिया पोस्ट खे तव्हां अञा ताईं लाइक ऐं शेयर नाहे कयो त जल्दी कयो बाबा हाणे असां प्रोग्राम जी लास्ट लिंक में पहुची विया आहियूं सो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए आप हमें कहां से ज्वाइन कर रहे हैं उसके अलावा आप जो है ना वो क्या करेंगे आप डायल करेंगे 03 95 43 97 99 95 ओके वासव भाई हमारे साथ मौजूद है वासव भाई आप हमारा शो सुन रहे हैं वेलकम करते हैं आपको और हैदर अब्बासी कहते हैं मैं भी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ शामिल हो गया हूँ बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं नूर चांदी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम नूर और अब्दुल खाले गबोर है कहते हैं बाजी क्या हाल है भाई माँ ठीक आया तुम बुधायो कि आयो एस एन अली भुगती हमारे

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ जी शू भी आ चुके हैं. जी शू, आपको भी कहते हैं खुश आमदीद एंड वालेकुम अस्सलाम. ओके जी, यहाँ पर हिदायतुल्लाह अहमदानी भी हमारे साथ मौजूद, कहते हैं वैसे. हाँ सही बात है. अच्छा जी शू, आपको हमारा शो पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया. बिलाल अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम बिलाल, खुश आमदीद. मोहम्मद समी है, वालेकुम अस्सलाम. आप ही सदरा, क्या हाल चाल है आपकी? मोहम्मद समी मरी बलोच फ्रामे प्रखार, शो सुपर से भी ऊपर है आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. ओके जी, उनका अलावा है जी हमारे साथ वफा मुमताज अली खोसो. ओके जी, वफा मुमताज अली खोसो तवाजो मोहब्बतू आन प्रोग्राम बुधो पया बाबा. चाचा खाले, तवा कडी कडी एडी गाल करी छडीना ना, पोतां जी वेगी भाईशी के थोड़ी कावड़ अची वेंदी आ. तू समझा. अच्छा सनौला बिरोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम. अति ठीक है, तां बुधा की आयो. और साजिद अली बलोच हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम भा, तवा भी सने प्रोग्राम में शामिल आयो, सो मोहब्बतू आन तवाजो. ओके जी, ओके, बहुत प्यारा गाना आप इंजॉय कर रहे हो. साथ साथ हजार भाई कहते हैं अदि आप बहुत शुक्रिया जी, आपने कुल मिलाकर मेरी तारीफ कर दी, आपको प्रोग्राम हमारा पसंद आ रहा है, सो थैंक यू सो मच. हजार भाई, आप भी वाइटेज का जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें हमें बताया करें, ताकि लोगों को पता चले कि भाई जो इतने सारे लोग हमारे साथ हैं वो दरअसल खूबसूरत क्यों हुए हैं, क्योंकि वो वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अच्छा एम अंसारी लिखते हैं कि हम परफेक्ट नहीं होते, हर तरफ एक तरफ हम किसी की बेहतरीन याद होते हैं तो दूसरी तरफ कोई हमारा नाम सुनकर गुस्से में आ जाता है, कोई हमारी कुर्बत के लिए तरसता है तो कोई हमारे साए से भी दूर रहना चाहता है, कोई

इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, हम किसी के लिए एक मिसाल तो किसी के लिए एक सबक होते हैं। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छी जो इनाम हमारे साथ बात शेयर कर दी और वाकई ऐसा ही है। ओगरी सोगर, आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको मैं जरा सा बता दूं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना, ये आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगी और खूबसूरती को बढ़ाने के साथ साथ आपकी खूबसूरती को जो है ना वो मेंटेन भी रखने वाली है, क्योंकि ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार हुआ प्रोडक्ट है। इसके अंदर विटामिन ई बीड्स है और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है, जो कि आपके चेहरे पर जो रिंकल्स आ जाते हैं, आंखों के हल्के आ जाते हैं, आपके डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन इतनी ग्लो करने लगेगी। जैसे जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद है वो देख रहे होंगे जनाब वीडियो में कि कितनी जो माई है वो अच्छी और गोरी हो गई है। तो आप भी इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम से, आप भी अच्छे और गोरे हो जाए, समझ रहे हैं। और सिर्फ गोरो रंग न मिलंदो बाबा, तव्हांजा चेहरे जा दाणा खत्म थी वेंदा, निशान खत्म थी वेंदा, तव्हांजी स्किन क्लियर थी वेंदी, बेदाग थी वेंदी, ऐं पोइ गोरी थींदी।

अच्छा हिदायतुल्लाह कहते हैं दी कराची की बिरयानी खाओगी, मैं खा रहा हूँ, खाएं जी खाएं बिरयानी बिरयानी। अच्छा और हमारे साथ हैं जी ये फहीम, कहते हैं कि हमसे रखिएगा तवक्को ना फरिश्तों जैसी, हम तो इंसान हैं औकात पे आ जाते हैं। सही गल है। ओके जी, मोहम्मद समी कहते हम भी आपका शो रोज सुनते हैं, मैं रुखसार मरी का भाई हूँ, आप ही ओके ब्रो, आपको वेलकम करते हैं।

फहीम आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा ही हुआ था। जी क्या बात है, क्या बात है। पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए और शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए मित्रों। अच्छा ये मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी सैटरडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्य सिस्टर सिद्रा मुस्कान, आप कैसी हैं? टॉपिक दोनों चाहिए। सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट लड़कियों को। अरे वाह, गाने तो अच्छे लगा रही हो, सच्ची बताए। वैसे हमारे साथ हमारी ये प्यारी फजीला सिंधी मौजूद है, बहुत शुक्रिया फजीला। ओके जी, और हमारे साथ किशोर भाई कहते हैं अदा मंडे जो भले कजो, भले कजो बाबा मोकल अव एंजॉय भी कजो, ठीक ओके जी। सो डीस स्किन ब्यूटी क्रीम भी तव अगर लाड़काने अचो या लाड़काने के आसपास आयो या वैसे या एकड़ी गाल तो कॉमन थी वही है अजकल जिते भी तुम रहो था उते तमाजे करीबी जनरल स्टोर्स से डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आए। अगर ना ही अना अवेलेबल थी तो उन थोड़ो कष्ट कर तो अवेलेबल करायो। अवेलेबल कराने लाइक डायल करना 03-15-799-0595 43-15-79-5595 ही नंबर तुम डायल कर जी तवे करीबी जनरल स्टोर से तवे एरिया में तवाजे गोठ में तवाजे शहर में तवाजे पाड़े में हर जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल थी वने, ठीक है? तो अवेलेबल करायो आई खूबसूरती की वधाईंदा रहो। हिदायतुल्ला कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी ऐसी है, घूमना फिरना हमारी, घर से काम और काम से घर, असा जी भी सेम बाबा सेम। अच्छा वफा मुमताज अली खोसो हमारे साथ हैं, आपको खुश आमदीद करते हैं प्यारे भाई। बिलाल अली कहते हैं अब ये अफवाह कौन फैला रहा है, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। ये चीज मैंने पहली बार सुनी, तो इस अफवाह को जरा हाइड कीजिए, लोगों की नजरों में नहीं आनी चाहिए, समझ रहे? अच्छा दर्दी दिल आप हमारा शो सुन रही हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल भी कर रही हैं। नहीं जी कल आप फरमाइश कीजिएगा अगर आज प्रोग्राम बढ़ गया है तो। अच्छा मौलाई मुजाहिद बोसार हमारे साथ मौजूद है, शायद आपके कुछ कमेंट्स ऊपर भी चले थे। सिद्धू जी चार दिन से मेरे आइए क्या तुम्हारे हैं। अच्छा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद प्यारे भाई। कहते हैं कि किसी को मांगा कर उसे ही बुलाने के।

वाह वाह वाह वाह, अगर हिदले दे रस्तो आ न ओ बन और शोनी तमास से गट मौजूद आए, थैंक यू सो मच, एंजॉय कियो बाबा पानी जिंदगी के। और मुनव्वर मुगल भाई कहते मेरी बेटी गाजिया आपको सिंदड़ी आम गिफ्ट भेजना चाहती है, तो अदी कैसे भेज सकते हैं? नहीं भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप बस मेरे हिस्से के खा लीजिएगा और दुआ करें जो वैसे आम में थोड़ी खाती भी कम हूँ, तो थैंक यू सो मच आपकी मोहब्बतों का। और हमारे साथ हैं जी इमदाद जतोई भाई, इमदाद जतोई और अब्दुल खालिक जतोई, मुबशर हुसैन जतोई की फैतला जतोई, आप हमारा शो सुन रहे हैं, सही भाइयों को वेलकम करते हैं। और जी हैं हैदर दादू का हैदरी, फारूक हैदर जतोई, सॉन्ग मास्टर मंजूर जो बुधरा है, जो मास्टर मंजूर हले पयो बाबा बुधो, और एगी फ्रॉम मटियारी सलामदी गानो बुधरा जो शेनिला गुल जो बिल्कुल भाला जी, कोशिश करना सी टाइम बची हुई हो तो। और ये मौजूद है सलाम आप अच्छा कहते हैं हमारे यहाँ तो बहुत आंधी आई है, फ्री में मेकअप हो रहा है, और सतर मोरी मिरपोखंड ने किशोर को हीरा लाल फौजी सवाई लाल प्ले करें जी मुखे कुठई जानी चले टाइम वरी तांजो गानो बुधी वठना सी, सो एंजॉय कयो बाबा फ्री वारो मेकअप। पर अगर तव्हां वाकई खूब चाहियो था तो पोइ तव्हांखे डी स्किन पोइ थी वधी वेंदी, चांस सफ़ा वधी वेंदव खूब। तव्हांजी जेका स्किन घणी सेंसिटिव आहे, सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू बि लॻाए सघो था, छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे डॉक्टर जी निगरानी जे अंदरि तयार थियल आहे, हिन जे अंदरि कोई बि केमिकल नाहे, हीअ सफ़ा टिप टॉप तरीक़े सां तयार थी वई आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻायो, हुन सां गॾु तव्हां डी स्किन फेस वॉश जो इस्तेमालु कयो, जेको हाइलोरोनिक एसिड सीरम सां तयार थियल आहे, तव्हांजी स्किन खे हाइड्रेट रखंदो आहे, क्लीन रखंदो आहे ऐं मॉइस्चराइज़ रखंदो आहे। सो ख़ूबसूरती तव्हां हासिल कंदा जॾहिं तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा।

ये हुमैरा चन्ना की गाने की फरमाइशें आ रही थी तो मैंने ये वाला गाना लगा लिया है, एंजॉय कीजिए। और दर्द दिल के नहीं सुनो चंदा, मैं ये पूछ रही थी कि हाँ जी, कहती हैं कि मैं ये पूछना चाह रही थी कि हलवा बनाते वक्त जल जाए तो उसे जलवा कह सकते हैं? बिल्कुल जी कह सकते हैं। और फिर बोले जलवा, ये जलवा। अच्छा हसनैन लिगारी हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं? अच्छा फहीम शेख कहते हैं वाइट एश लवली क्रीम बेस्ट है, क्या बात है जी, बिल्कुल आप इस्तेमाल करते रहिए। आशिक खास के लिए हमारे साथ फ्राम नवाबशाह कहते हैं आज जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, तमाम सा सगर मौजूद है सो मोहब्बतों तमाम जो। ओके जी हिदायत ला, पता नहीं क्या लिखा है आपने, ये बात मुझे समझ नहीं आई जरा आपकी। और किशोर भाई कहते हैं असा के सिर्फ बाबा डी स्किन वालों जो डॉक्टर है उन पा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाई है तरें तक वे तो पा भी लगा जी, तां भी सफाई डी स्किन डॉक्टर वांगे सोना थी वो समझो था।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेट न्यूज़।
1: हम तो वधी बावन क्यों है ताजन कार्रवाई में वधी कन्नम खारजन के जन्म भेड़ो कयो वियो। खारजन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई भी कयो पई वञन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शोबान ए बेन ऑपरेशन में 88 दहशतगर्द मारजी वया। गरु वजीर मोहसन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेस के भेटा पे शक भी चयो तो मुल्क में लिकल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नायब सदर जे डी वेंस ए परदेही वजीर मार्को रोबियो के ईरान से सफारती राबता ए गालियों जारी रखने की हिदायत। पाण ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण की भी धमकी दई छी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है त अमरीकी फौज के मुंह कतल करण की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण जो चई छो है। फौज ईरान ते 1000 मेजाइल फायर करण लाइ तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोए ते हटणो पवंदो। काब जंग ईरान की हथियार फिटा करण से खत्म न थी पोते न हटंदी। अमरीका मुआदो टोड़ो तो जिम्मेवार पान हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ है तो जंग लाए हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्क ही अमरीका से मोसल गाल कर सके तो। परदेही वजीर अब्बास राखची है तो अमरीका के गण की दरख्वास्त ना कई। अमरीका से मुआदो गडियल बुनियादन से ही थी सके तो। अब्बास राखची मौजूदा सूरत हाल से गाल ओमान पहुंचल।

छिकताणवे वाद बाद अमरीका जहाज बरदार ब बेड़ा ईरान वेझो मुकर करे छड़िया। यूएसएस इब्राहिम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ईरान वेझो मुकर कयो वियो। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जा 20 का वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त करे रहा आहिनि। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरानी फौज जी दुश्मन जी चुरपुर ते नज़र आहे। फौज मुल्की सलामती ऐं आवाम जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजी फौज ते फ़ख़्रु आहे। सऊदी वली ट्रम्प सां राब्तो बितरमेत खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाननि अमरीका ऐं ईरान विच में हलंदड़ ॻाल्हियुनि जो बि जाइज़ो वरितो। ॿिन्ही अॻवाननि बहिरी रस्तनि जी हिफ़ाज़त ऐं आज़ाद चुरपुर ऐं खिते जी सिक्योरिटीअ खे हथी ॾियण वारियुनि कोशिशुनि ते बि ज़ोर भरियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि तां ॿ ॼणा क़तल। प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी जे ॿिनि धुरनि में झेड़ो, हिकु ॼणो क़तल थी वियो, हिकु ज़ख़्मी। ॻोठ गहणो कलोड़ो में ज़मीनी तकरार तां धुरियो। गोलियूं लॻण जे नतीजे में रहीम बख़्श कलोड़ो मारिजी वियो, हिकु ज़ख़्मी थी पियो। दरिया ख़ान मरी वेझो बि ॻोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लॻल लाशत। नौजवान इम्तियाज़ लाशारी जो गोली लॻल लाश ॻोठ वेझो ज़मीन तां मिलियो। पुलिस क़तल शक हेठि टिनि ॼणनि खे हिरासत में वठी छॾियो। पुछागाछा जारी। जेकबाबाद जे ॻोठ वली मोहम्मद बहण में कारा इल्ज़ाम हेठि चाचे हथां भाइटी क़तल। जवाबदार सदाम बहण नौजवान भाइटी रेहाना खे कारा इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वियो। पुलिस मूजिब जवाबदार फरार थी वियो आहे। संदसि गिरफ़्तारी लाइ छापा हया पिया वञनि। छहनि महीननि खां तकरारी बणियल कराची बार एसोसिएशन जूं चूंडू जारी। सदारती उमेदवार लाइ आमिर नवाज वड़ाइच, जी एम कोराई ऐं असदुल्ला शाह आम्हूं साम्हूं। नायब सदर जे उहिदे ते आमिर शहज़ाद अहमान, इरफान कीरियो, मोहम्मद हारून कोसो, मोहम्मद इरफान ऐं नज़ीर शर में मुक़ाबिलो। पहिरियों भेरो वोटिंग बायोमेट्रिक ज़रिए थी रही आहे। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतिजाज। टंडो ग़ुलाम हैदर में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि बदीन रोड ते धरणो हयो। मुबारकपुर जे मूसा अलाहाबाद शाख में बि पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। निंदो में कढ़ण सब डिवीज़न जे वाहन में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि एहतिजाज कयो, पाणी फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर माथिले में हारण हणण ऐं

0: गाॾीअ खे क्रॉस करण खां पोइ रथ खे तशदुद जो निशानो बणाईंदड़ वॾेरे ख़िलाफ़ केस दाख़िल। वॾेरे हाजी ख़ान महर मथां सरकारी फिराद ते केस दाख़िल कयो वियो। पुलिस सरार करण में नाकाम, गाॾीअ खे हारन ॾियण ऐं क्रॉस करण ते वॾेरे हाजी महर फहद लगारीअ खे तशदुद करे गाॾीअ सां गेलियो हो। वॾेरे हाजी महर जी मेड़ वठी अचण ते पोरत खे माथेलो जी अदालत पारां बाद थाणे ते वॾेरे मथां केस दाख़िल कयो वियो। घोटकीअ में नौजवान ज़ाल समेत मुबैना तौर अगवा, ॻोठाणे गुलाब पुट ऐं नुंहं जी बाज़ियाबी लाइ एहतजाज। अली हसन सईदा सां पसंद जी शादी कई हुई। नारीअ जा वारिस नाराज़ हुआ। पुट घरवारीअ खे डॉक्टर ॾांहुं वठी वियो हो। ॿिन्हीअ खे बाज़ियाब करायो।
1: आप सुन रहे हैं नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: ये हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
4: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
3: अब दर्द को कहें अलविदा
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
3: जी हाँ,
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: ये ऑइंटमेंट
3: मुतासर जगह पर आसानी से जज्ब होकर
4: दर्द, सोजिश
3: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है।
4: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
3: गर्दन और कमर की तकलीफ,
4: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
3: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
4: और जल्दी जलन में मुफीद।
3: मुतासर जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
3: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
5: GAFM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा।

0: Pellegrino.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कारजन खिलाफ़ ज़मीनी ए फिजाई कार्रवाइयूं जारी आहिनि। ऑपरेशन दौरान माजी वेल खारजन जो अंग वधी 88 थी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नकवी पारां ऑपरेशन ते फोर्सेस खे भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो त मुल्क में लिकियल समूरनि दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। अमरीकी सदर जेडी वेंस ऐं परडेही वज़ीर मार्को रूबियो खे ईरान सां सफारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत। पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मेसारण जी बि धमकी। अमरीकी सदर चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मुंहुं खे क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मेसारण जो चई छडि॒यो आहे। का बि जंग ईरान जी हथियार फिटा करण सां ख़त्म न थींदी, पोइ ते न हटंदासीं। अमरीका मुआदो टोड़ियो त ज़िमेवार पेमेंट जे लाइ हर वक़्त तयार रहंदड़ मुल्की अमरीका सां मूंखे ॻाल्हियूं जा सां मुआदो गॾियल छिकताण में वाद बहाज खे वियो। सेंटकॉम मूजिबि अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर करे रहिया आहिनि।

वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त ईरानी फ़ौज जे सलामती ऐं आवाम जी तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। शहरनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जी सिहत वारी वज़ारत मूजिबि अमरीकी हमलनि में शहीद थींदड़

0: सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि कलोड़ा दौरान मारिजी वियल ख़ारजी दहशतगर्दनि जो सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब पाक पुलिस जो ख़ारजनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी आहे। ताज़नि कार्रवाइयुनि में वधीक नव ख़ारजनि खे मारियो वियो। ख़ारजनि ख़िलाफ़ ज़मीनी ऐं फिज़ाई कार्रवायूं जारी आहिनि। ऑपरेशन दौरान मारिजी वियल ख़ारजनि जो अंग वधी 88 थी वियो। घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां ऑपरेशन ते फोर्सिस खे भेटा पेश। मोहसिन नक़वी चयो त मुल्क में लिकियल समूरनि दहशतगर्दनि खे ख़तम कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ऐं परडेही वज़ीर मार्को रोबियो खे ईरान सां सफारती राब्ता ऐं ॻाल्हियूं जारी रखण जी हिदायत। पाण ते हमले जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मेसारण जी बि धमकी। अमरीकी सदर चयो आहे त अमरीकी फ़ौज खे मूंखे क़तल करण जी सूरत में ईरान खे धरतीअ तां मेसारण जो चई छडि॒यो आहे। का बि जंग ईरान जी हथियार फिटा करण सां ख़तम न थींदी, पोइ ते न हटंदासीं। अमरीका मुआदो टोड़ियो त ज़िमेवार पाण हूंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर चयो आहे त जंग लाइ हर वक़्त तयार रहंदड़ मुल्की अमरीका सां मोसर ॻाल्हियूं करे सघे थो। परडेही वज़ीर अब्बास राग़ची जो चवण हो त अमरीका खे ॻाल्हियूं जारी रखण जी दरख़्वास्त नाहे कई। अमरीका सां मुआदो गडि॒यल बुनियादनि ते ई थी सघे थो। छिकताण में वाद बाद अमरीका जहाज बरदार ब बेड़ा ईरान वेझो मुक़ररु करे छडि॒या। यूएसएस इब्राहिम ऐं यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश खे ईरान वेझो मुक़ररु कयो वियो। सेंकॉम मूजिब अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान चयो आहे त ईरानी फ़ौज जी दुश्मन जी चुरपुर ते नज़र आहे। फ़ौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जी तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। शहरनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जी सिहत वारी वज़ीरी थींदड़ शामिल आहे। 8 जुलाई ते अमरीकी हमलनि में 115 शहरी ज़ख़्मी थिया। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला कया हुआ। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि तां बजणा क़तल। मुख़्तलिफ़ शहरनि में तकरारुनि तां बजणा क़तल। प्रयालो वेझो कलोड़ा
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GAFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: हर बात मटियारी 8.6 नज़ारा।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: إن هو.
1: जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6
2: याम फैम जी ये है
3: एफएम सबसे हिट ये बनी है आवाज सिंध की आवाज।

0: मैं क्रीनू।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6। उधर
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खिते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: काब जंग ईरान जी हथियार फिटा करण से खत्म न थी पोते न हटंदी अमेरिका मुआदो टोड़ो तो जिम्मेवार पान हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ चया है तो जंग लाय हर वक्त तैयार रहंदड़ मुल्की अमेरिका से मोसर गालू कर सके तो। परदेही वजीर अब्बास राखची जो चवण हो तो अमरीका के गालू जारी रखने की दरख्वास्त ना कई अमरीका से मुआदो गडल बुनियादन ते ही थी सके तो। छिकताण में वाद बाद अमरीका जहाज बरदार बेड़ा ईरान वेझो मुकर कर छ्या यूएसएस इब्राहिम यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ईरान वेझो मुकर वो। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जहा वी का जंगी बेड़ा विच ओभर के समुंड में गश्त कर रहा है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जमान है तो ईरानी फौज की दुश्मन की चुरपुर से नजर है। फौज मुल्की सलामती अवाम की तहफुज के यकीनी बनाए रही है। ईरान अमरीकी हमलों में 17 शहर के शहीद थियण की तस्दीक कर छी। ईरान की सेहत वाली वजारत मूजिब अमरीकी हमलों में शहीद थन्दड़ में एक औरत भी शामिल है। 8 जुलाई से अमरीकी हमलों में 115 शहरी जख्मी थे। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान के मुख्तलिफ शहर से हमला किया हुआ। सिंध के मुख्तलिफ शहर में तकरारों तो बजा कतल प्रयालो वेझो कलोड़ा बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो एक जनो कतल थी एक जख्मी गोठगणो कलोड़ो में जमीनी तकरार धुरन में झेड़ो थी पयो। दरिया खान मरी वेझो भी गोठ आदम लाशारी में नौजवान जो गोली लगल लाश इम्तियाज लाशारी जो लाश अस्पताल मुंतकिल पुलिस टिन जणन के हिरासत में वठी छो पुछागाछा जारी। जैकमाबाद के गोठ वली मोहम्मद बहण में कारा इल्जाम हेठ चाचे हथा भाइटी कतल जवाबदार सदाम बहण नौजवान भाइटी रिहाना के कारा इल्जाम हेठ कतल कयो। वाके बाद जवाबदार फरार थी वो पुलिस जा छापा जारी। 6 महीन का तकरारी बनल कराची बार एसोसिएशन जो चूंडू जारी। सदारती उम्मीदवार लाए आमिर नवाज वड़ाए के जीएम कोराई असदुल्ला शाह में चोटी जो मुकाबलो। नायब सदर के अहदे से आमिर शहजाद अवान अरफान कीरियो मोहम्मद हारून खोसो मोहम्मद इरफान नजीर शर में मुकाबलो। पेरों भेरों वोटिंग बायोमेट्रिक जरिए थी रही है। सिंध के मुख्तलिफ शहर में जरई पानी की खोट खिलाफ आबादगार एहतजाज टंडो गुलाम हैदर में पानी खोट खिलाफ आबादगार धरनो हो। मुबारकपुर के मूसा अलाहाबाद शाख में भी पानी खोट खिलाफ एहतजाज निंदो में भी आबादगार पारा पानी खोट खिलाफ एहतजाज कर पानी फराम करने जो मुतालबो। मीरपुर माथिले में हारण हणन ए गाड़ी के क्रॉस करण तोरेत के तशद जो निशानो बढ़ाईदड़ वडेरे खिलाफ केस दाखिल। वडेरे हाजी महर मथा सरकारी फिरियाद से केस दाखिल कयो वियो। पुलिस वडेरे के गिरफ्तार करण में मुकम्मल तौर से नाकाम बनल। गाड़ी के हारण देण ए क्रॉस करण से वडेरे हाजी महर फहद लगारी के तशद्दुद करे गहलियो हो। वडेरे हाजी महर की मेड़ वठी अचण से पोरत केस माफ कयो हो। मीरपुर माथिलो की अदालत पारा नोटिस वठण बाद दाद लगारी थाने से वडेरे मथा केस दाखिल कयो वियो। गोटकी में नौजवान जाल समेत मुबैना तौर अगवा वालदेन जो एहतजाज बाजियाबी जो मुतालबो। गोठाने गुलाम रसूल शेख जो जाल से गड पुट ए नूह की बाजियाबी लाए एहतजाज। वालदीन मूजिब पुट अली हसन सईदा सा पसंद की शादी कई हुई। नारी

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: पाकिस्तान पिनल कोड में जेकी ये कॉन्सेप्ट सनु चिंता 403 का वटी डिसऑनेस्टली डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी 403 404 405 406 407 408 409 यो पार्टिकुलर जेके सेक्शंस सन दीस सेक्शंस आर एलोकेटेड फॉर द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी जे में ताजे डिसऑनेस्ट और मिस अप्रोप्रिएशन अचे दी पई प्लस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट अचे दी पई हैंड ओवर टू द प्रॉपर्टी टू सर्वेंट्स टू क्लार्क्स टू एजेंट्स टू पब्लिक ऑफिसर अगर मिसयूज करे ये सजे इन जिम्मे में अचन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी में
1: अस लेट सपोज एज्यूम कर बतौर अमानत रख रहा हूं फॉर एग्जाम्पल अस मोबाइल फोन के ऐसी वो ठीक है असो मोबाइल फोन तुम पा वे रखो कला का बाद में अचान पे तक मथा पे उन मिसयूज पे कर पासवर्ड भी टेड़ी अख से छी मिसयूज कई उन नंबर्स कढ़ी वरती डेटा कढ़ी वरती तो इन में अचे पो
0: क्लियरिफाई कद अगर प्रॉपर्टी अगर कई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट उन टे शे लिखल काते चार लिखल बहरहाल एज पर माई ओपिनियन जो पढ़ो आ तो उनमें चार शे रिक्वायर्ड सब का पेरो यह होंगी तो प्रॉपर्टी दैट इज गिवन बाय समवन वॉलेंटरली डिनल हुए वॉलेंटरली इंटरेस्टेड हुए इंटरेस्टेड जो मतलब आ उनके अस अमानत तौर रख रहा सेकेंड डेट पर्सन हैज इलीगली इलीगली यूज इट फॉर इट्स ओन पर्पज वेदर द कॉन्ट्रेक्ट एक्सप्रेस लीड आर एम्प्लॉयड लीड एम्प्लॉयड जो एक्सप्रेसली एम्प्लॉयड जो मतलब आ या तो अस वर्बली उन्होंने वह शे डी हो रखो पा वट अस कंसर्न टाइम रीजनेबल टाइम से वही छदास या एम्प्लॉयड ली हो एम्प्लॉयड माना एक्शन एंड कंडेक्ट के थ्रू जो अस इशारतन चढ़ाऊं खी छो या अस इशारतन चढ़ा असई छो या अस इशारन चढ़ा इनके रखो दैट इज एम्प्लॉयड कॉन्ट्रेक्ट टो दैट मैन वंस अगेन मैं रिपीट तो क्या दैट मैन हैज वेदर ही हैज यूज इट अगेंस्ट द लॉ अगेंस्ट द कॉन्ट्रेक्ट वेदर ही हैज डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी ठीक है अगर इन टिन जिमरन में अगर अचे तो दैट मैन हैज कंडक्टेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड डिसअप्रोप्रिएशन डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी हाँ अचूँ तिनल मिसाल अगर तहो दोस्त उनी आ शे अगर वो नॉर्मली तहे सामू ही पासवर्ड खोले तो घर कॉल करे तो उनखा पो कोई भी मैसेज आ कम्युनिकेट करे तो टूवर्ड्स फैमिली मदर थी वही फादर थी वही वाइफ थी वही सिस्टर थी वही दैट डजेंट मैटर वह क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में सामू ही न करे बट यू नो दैट कि अगर कॉल कई भी होंगी घर ही हाँ इतने डिसट्रस्ट कि क्रिएट थे मिसट्रस्ट कि क्रिएट थे कि अगर उ फोन खड़ी कर उ अगर कोई एक्सटोर्शन मनी के लिए कें तहों फोन यूज कर एक्सटोर्शन मनी के करे कॉल तो करे तो इन ही नंबर ते या थ्रू तहज या मैसेज तो करे टेक्स तो करे तो मुख्य इलीगल मनी पुजाओ ठीक है ना नाउ ही इज अ ब्रेक योर मिसट्रस्ट तहज फोन जो गलत इस्तेमाल
1: एग्जाम्पल दे मोबाइल वॉलेट्स हूं जीएसके पैसा में पैसा होजन
0: तुम पैसा खड़ी ट्रांसफर कर दैट इज अ मिसट्रस्ट दैट इज अ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ओके सो कुछ मैसेजेस आया फीडबैक आयो है असा उसे शामिल कंदी ऑडियंस जहां सवाल इंक्लूड क्यों पाया वॉइस नोट है अचो तो बुध पा
2: असलकुम तैयब हसन तुम प्रोग्राम बुधी रो टॉपिक से रिलेटेड मुझे सवाल अगर कैंसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थी वे तो एफआईआर कि दर्ज कई वे उन कड़ा डॉक्यूमेंट या सबूत की जरूरत पड़ सके इनते बुधाइजो
1: ठीक है अदा तैयब सर इन अगर थी वे तो यो पे तो असा थोड़ो मां चाहें पे तो एग्जाम्पल्स दियो तो जी असो कॉन्सेप्ट थोड़ो क्लियर थिए तो इन के अलावा बया कड़ा एग्जाम्पल्स जी अस हवालो दिनोसी पीपीसी जो पीपीसी में जो 404 में जी लिखल आ डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो डिसीड पर्सन इन जो कि कैंजी विल है उनमें जो का खुर्द बुर्द कई वे पई उन छदल प्रॉपर्टी आने
0: जी मां वंस अगेन बुधायां तो जी असा इतने जिक्र कियोसे मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी मिस ट्रस्ट या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वह आखिर प्रॉपर्टी है कड़ी वंस अगेन रिपीटिंग दैट थिंग फॉर द ऑडियंस जी असे थी जी अस बुधे थी उन अगर जो विच में भी अस कें ज्वाइन किया तो जस्ट फॉर देयर रिपीटेशन फॉर देयर सेक ऑफ रिपीटेशन मैं वो शे बुधा तो मूवेबल प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में सपोज अगर को मू आ कें सर्वेंट आ घर में अकेलो रहे तो उकराड़ो आ या को कुकराड़ी ओल्ड एज जन रहन था पाया उन फैमिली बाहर शिफ्ट थे हाँ उ चई तो वे पेंे सर्वेंट के या पेंे किनारे के चई तो वे तो मुझे अकाउंट में इन टाइम 20 लाख रुपया पिया अव जी मुझी गाड़ी आ अगर मुख्य कुछ थी वे तो मुझी गाड़ी ए मुझे जो अमाउंट आजी फैमिली मेंबर्स के शिफ्ट कर छो
1: ठीक है
0: हाँ डिसीज पर्सन के दौरान वह शे उन खबर हुई उन जडे उन निबर कर छी उन 20 लाख की जगह से 5 लाख पान यूज कर छा पान यूज कर छा ए बकाया 15 लाख डिन जी उन 5 लाख खया न देट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ
1: ट्रस्ट
0: इन कुछ मानों के जेवर हों अगर मिसाल लेडीज होंद कम करण वाली अगर औरतू होंद या उनकी खिदमत वाली होंद सर्वेंट्स होंद या मेड सर्वेंट जो चाहबो अगर वह जेवर सपोज उन 3 तोला 5 तोला या सपोज 10 तोला सोनो आने वली वारसन के हाली न बुधा तो मुट केतो सोनो है पर उनके मेड सर्वेंट के खबर आ नाउ शी लेडी इज डाइट ठीक है न औरत गुजारे वही औरत गुजारे वन का नाउ उन अलमारी खोली अलमारी में एक तोलो ब तोलो जो भी सोन जो खी सी खो बाकाया उन हैंडओवर कर छे वारिसन के फ्रॉम देट 10 तोला में अगर उन 2 तोला अगर मिसयूज कर देट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ओके अच्छा इन में भी मुझे जहन में अची वही गाल अक्सर तिठो जो एक्सीडेंट्स घना थन पाया एक्सीडेंट थे कंडीशन सफा डाउन होती मू मौजूद हूं घना डिठा अड़ा केसिस तो उत उनका वॉलेट्स में पैसा भी कड़ी वा या का कीमती शे खी
0: क्रिमिनल ब्रीच में ना अचन चाहता मिस अप्रोप्रिएशन में मिस अप्रोप्रिएशन जो कॉन्सेप्ट वन सेकेंड तक क्लियर क्या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में वॉलंटरली शे हैंड ओवर थे पी
1: बदनी
0: थी बाद में थी पैदा थे मिस अप्रोप्रिएशन में शे मिले थी पी या कोई असा दिए तो पो पर इंटेंशन
1: डिसऑनेस्टी
0: बाद में डिसऑनेस्टी जी पैदा थे थी वह लेटर
1: पैदा
0: इनिशियल उनको न हों इंटेंशन न हों
1: ये
0: शे मिस अप्रोप्रिएट क्या या इन अमानत में खयानत क्या जी तुम बुधा पाया तो अगर को डिसीज कुराड़ो आ अगर को गुजारे तो वे या को विल लिखाया तो वे हाँ विल में उनके बुधा तो वे मुझे 200 एकड़ जमीन है मुझे फैमिली मेंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कई
1: वे
0: लेटर ऑन अगर वो विल के एग्जीक्यूट करो उन में सिर्फ हेर फेर कर छे तो 200 एकड़ में 10 एकड़ जी जमीन है वह मुझी भी डेट जो पॉइंट आ जाते हो मिसट्रस्ट क्रिएट तो थे दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सो टू डिफरेंस थिंग
1: हां समझियो जी मतलब कहते ट्रस्ट हूं तो जाहिर गल है तो अमानत भी उनके ही देनी मरदी है
0: अमानत भी उनके
1: वो ट्रस्ट जो अगर गलत
0: गलत इस्तेमाल
1: लगा करे पियो तो वो जो कहत
0: क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमेशा अप्रोप्रिएशन दीस आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स
1: अच्छा शबा साहब अचुन पिया इन जी पीपीसी सेक्शन 407 में हवालो लिनो वयो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय कैरियर एंड वेयर हाउस कीपर्स एसेट्रा कि पे ऐसो इन काई शे कंखे मतलब मिले पई कंखे पोचायण के लिए उनमें विच में हू खयानत पो करे या वेयर हाउस कीपर थी या बिजनेसमैन थी कंखे अगर पोया हैंड ओवर करे वन पा पैं बिजनेस उनमें हू खयानत करे उन मिसयूज करे
0: पहले के ये चंदम जी कोई भी कोरियर सर्विस करो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो कोई कोरियर सर्विस के थ्रू तेजो कीमती सामान मोकल या ऑनलाइन जरिए अगर तुम ऑर्डर तक कर तो वो ऑनलाइन के जरिए तेजे घर सामान पुजन अचे सपोज तुम मोबाइल ऑर्डर किया मोबाइल ऑर्डर करण के टाइम जैसे तुम इतने पुगो तो मोबाइल तक डबो तो मिलो पर मोबाइल न मिलो वो विच में जो मोबाइल गुम थी
1: वो
0: बेसिकली दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक फनी मैं बुधा जे सपोज हुंदो त न
1: जी
0: हुंदो त न जी असा वणा ने फूड सर्विसेस हले थी पई
1: यस
0: सपोज कोई फूड सर्विस जे दौरान कोई कोड़ो ऑर्डर तो करे छदे ऑर्डर जे दौरान घर ताई पुजंदे पुजंदे में कोड़ो ऑर्डर गुम तो थी वे ठीक आ तो वो जो ऑर्डर जो गुम थे या ऑर्डर के बी कई जगह ते डिलीवर करन पैसा पूरा वटी छदन और जो उन विच में जो मिस अप्रोप्रिएशन थे थी दैट इज कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: अच्छा इन ते ये भी एक अक्सर थिंदो आ शेवा साहब ते स्पेशली असा काई शे कदे कदे काई भी शे खाण वाली घुराई ना तो जो
0: सामान पूरा अवेलेबल
1: रस्ते में
0: एग्जैक्टली सामान अवेलेबल न हों या उनके सपोज हाँ एक बिरयानी जो पैकेट अगर 10 चमचा उड़ी छा तो अस उन न पुछंदे तो है पर डिठो वे तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्रिएट कर कोरियर सर्विस से सपोज कोरियर हाँ कोरियर सर्विस के थ्रू असा डॉक्यूमेंट्स मोकल दू कपड़ा मोकल दू फर्नीचर्स मोकल दू कोई भी अड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर्स अस मोकले छा ठीक है अगर या शूज़ भी मोकिलंदा आहियूं या असां कपिड़ा अगरि ड्यूरिंग इन दौरान अगरि उहो शख़्स या उहो इंसान या उहो को सर्विस अगरि हुनखे मिसयूज़ करे पंहिंजे पर्पज़ लाइ इस्तेमाल करे छॾे थी फ्रॉम देट पॉइंट ही इज़ अ क्रिएटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ऑल दैट। ऐं वेयर हाउसिस
0: वेयर हाउसिस में ईअं थींदो सपोज़ तव्हांजो

0: हिन साल मून थो ठहे नारायण ऐं कागान वञण जो गर्मी बि अचनि थी पियूं ऐं मोस्ट ऑफ द टाइम हर कोई हले वेंदो आहे। तव्हां पंहिंजे पाड़े में पंहिंजे लोकेलिटी में गाॾी बीहारींदव
1: ओके
0: त हे मुंहिंजी गाॾी खे तव्हां संभालियो या पंहिंजी मोटरसाइकिल बीहारे वेंदव गाॾी त तव्हां खणी था वञो या अगरि बाए फैमिली तव्हां वञो त ट्रेन जे थ्रू सफ़र कंदव। हाणे तव्हां कंहिं जॻह ते कंहिं गैरेज ते गाॾी बीहारे छॾी चाबी बि ॾेई छॾी हाणे हुन शख़्स छा कयो हुन गाॾीअ खे मुसलसल टैक्सी करे यूज़ करे छॾियो हुन में तव्हां हुनखे एज़ अ वॉलंटरली हैंड ओवर कई प्रॉपर्टी त मां हिकड़ी प्रॉपर टाइम ते या हिकड़े पर्टिकुलर टाइम ते मां ईंदुमि तव्हां खां इहा शइ वठंदुमि अगरि हिन में जेको बि तव्हांजो जेको हूंदी महिनत हूंदी आई विल पे टू यू एज़ पर द कॉन्टेक्ट जेको मां तव्हांखे चयो एक्सप्रेसली कॉन्टेक्ट हूंदो आहे या इम्प्लाइड कॉन्टेक्ट हूंदो आहे एज़ पर हिन कॉन्टेक्ट जे हिसाब सां। पर लेटर ऑन छा कयो जीअं तव्हां नारायण ऐं कागन जे सफ़र ते निकितो फ्रॉम नेक्स्ट डे देट मीन यूज़ देट यूर प्रॉपर्टी एज़ अ टैक्सी या हुनखे कंहिं बि कंहिं सर्विस जे थ्रू हुनखे हलाइण शुरू करे छॾियो हुन मां अमाउंट कमाइण शुरू करे छॾे तव्हांखे ख़बर ई न उहो जेको यूज़ेज आहे न फॉर पर्सनल गेन ऐं कंहिंजे पर्सनल लॉस जो एंड देट इज़ कॉल्ड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ओके। ऐं ईअं अक्सर थींदो आहे तव्हां प्राइवेट मुलाज़िम जेके आहिनि प्राइवेट जेके आहिनि त कंहिं जॉब वग़ैरह कंदा आहिनि ऐं बिज़नेस वग़ैरह हुननि जे जॾहिं हैंड ओवर कनि पिया को सामान
0: स्टोरेज हूंदा आहिनि स्टोरेज हूंदा आहिनि मिसाल मेडिसिन स्टोरेज हूंदा आहिनि फर्नीचर स्टोरेज हूंदा आहिनि मोबाइल स्टोरेज हूंदा आहिनि कंप्यूटर स्टोरेज हाणे कंहिंखे को हज़ार हिकिड़ा सेल फोन हैंड ओवर करे थो हाणे हज़ार मां अगरि हू ॿ फोन बि खणी थो छॾे को मायना त नथा रखनि हज़ारे फोन मां ॿ फोन बि अगरि खणी थो छॾे हलियो थो वञे देट इज सिंगल पॉइंट इज़ कॉल्ड मिसट्रस्ट हुन मिसट्रस्ट खे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चइबो आहे छोकी अमानत में ख़यानत थिए थी पई प्रॉपर्टी वॉलंटरली वञे थी को भरोसो करे ॾिनो थो वञे त यू आर बींग पेड फॉर देट थिंग ऐं पेमेंट वठण खां पोइ बि जेकॾहिं इंसान हुनखे यूज़ करे पंहिंजे पर्सनल गेन जे लाइ देट इज़ कम इन द एम्बिट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ओके। अच्छा हीउ ब्रेक ते वञण खां पहिरां पाण खे सवाल आयो उन्हनि सवाल खे FIR कीअं कराइजे अगरि इनकेस ई थींदो हुनजे सवाल खां पहिरां हिकिड़ो सवाल अगरि इहो थिए पियो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थिए पियो त कीअं आइडेंटिफाई कजे त हीउ सिविल नेचर आहे या हीउ क्रिमिनल नेचर आहे सिविल कोर्ट में कहिड़ा केसिस वञी या FIR जे लाइ जेके आहिनि
0: आई गॉट योर पॉइंट तव्हांखे चयुमि कि सिविल मैटर्स में ऐं क्रिमिनल मैटर में टे शयूं तव्हांखे अमूमन मेन इनग्रीडियंट्स आहिनि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जा हिकु त प्रॉपर्टी इज बींग वॉलंटरली ट्रांसफर्ड वॉलंटरली असां इंट्रस्टेड कई आहे टू समवन ॿी इहो ई आहे त एज़ पर कॉन्टेक्ट देट इज़ कंडक्टेड बिटवीन द टू पार्टीज़ एक्सप्रेसली ऐं इम्प्लाइडली कि हे तव्हां प्रॉपर्टी रखो ऑन द सर्टन डेट ऑन सर्टन टाइम ऑन द रीज़नेबल पंहिंजो जेको आहे न मौके ते अची करे ओकेजन ते अची करे आई विल टेक देट प्रॉपर्टी फ्रॉम यू तव्हां खां मां इहा प्रॉपर्टी वापसि वठंदुमि अगरि हुन में अगरि को मिसाल तव्हां हुनजे मथां को ख़र्च कयो हूंदो या हुनजी लुक आफ्टर कई हूंदी आई विल पे यू ठीकु आहे पर उहो छा थो करे उन कॉन्ट्रेक्ट खे ब्रीच थो करे टी पॉइंट इहो आहे त देट पर्सन इज़ डिस्पोसिंग ऑफ डिस्पोसिंग मतिलबु हुनखे इस्तेमालु थो करे या देट पर्सन इज़ रिमूविंग यानी कि डिस्ट्रॉय थो करे छॾे सो हुन छा थो करे त वॉलन हुन शइ खे हुन पूरे जे पूरे कॉन्ट्रेक्ट खे हुन एज़ पर लॉ हुनजी वायोलेशन करे थो त इहे टे इनग्रीडियंट्स लाज़मी आहिनि जेको क्रिएट कंदा कि इहो सिविल नेचर खां हटियल आहे छोकी प्रॉपर्टी में शुरू में बदनीयती न हूंदी आहे लेटर ऑन बदनीयती क्रिएट थी वेंदी आहे त हुनखे यूज़ थो करे हाणे सिविल में छा आहे सपोज़ कंहिंखे खां पैसा वरिता हो पेमेंट त ॾींदो थो अचे पर ड्यू टू सम लॉस हाणे उहो पेमेंट नथो करे सघे हुन में बदनीयती न आहे हो कुझु मसलनि जे करे हालातनि जे करे हो तव्हांखे कुझु पेमेंट्स न ॾेई सघियो आहे हिते छा आहे हिते इंसान हुन प्रॉपर्टी खे मिसयूज़ थो करे छॾे ठीकु आहे इहो डिफरेंस आहे क्रिमिनल
1: शहबाज़ साहब अक्सर थींदो आहे तव्हां ॾिठा हूंदा पंहिंजी हिन प्रैक्टिस में त पैसा ॾींदे ई ॾींदे हमरा कंहिं बि ॻाल्हि ते तल कलामी थी वेंदी आहे चवंदो आहे न ॾींदो मां पैसा जेको करणो अथई वञी कर पोइ बि सिविल जी तरफ़ ईंदो या
0: सिविल थींदो उहो स्पेसिफिक में वेंदो तव्हांजो कॉन्टेक्ट आहे न ब्रीच ऑफ कॉन्टेक्ट तव्हां हलिया वेंदो होॾे सिविल जी तरफ़ हलिया वेंदो तव्हां हिते छा आहे हिते अगरि मां तव्हांखे कुझु एक्स्ट्रा पॉइंट ॿुधायां जीअं असां बेलमेंट हूंदी आहे न प्लीज हूंदी आहे बेलमेंट हूंदी आहे मॉर्गेज हूंदी आहे हाणे प्लीज ऐं बेलमेंट जी तरफ़ अगरि मां ईंदुमि कॉन्सेप्ट आहिनि बेसिकली कॉन्ट्रेक्ट एक्ट जा त बेलमेंट में छा थींदो आहे त इंसान वॉलंटरली जेको आहे न प्रॉपर्टी खे ट्रांसफर थो करे विदाउट जेको आहे न गिविंग पोज़ीशन पोज़ीशन न ॾींदो सॉरी पोज़ीशन ॾींदो इंटाइटलमेंट न ॾींदो मालिकी न ॾींदो मालिकी माण्हू वटि ई रहंदी पोज़ीशन ॾेई छॾंदो हाणे उहो चवंदो त मां तव्हां खां सर्टन टाइम ते अची करे इहा शइ वापसि वठंदो हुनजो लुक आफ्टर कंदो इन जो हिकिड़ो सवलो मिसाल ॾियां तव्हां कंहिं माण्हू खे चओ त साईं हे मुंहिंजो 5 किलो जो जेको चांवरनि जो बोरो आहे तव्हां रखो हिते ऐं इहो फाइन बेहतरीन किस्म जो ये चावर आने तक रखा हलिया वो चीज मैं सुबह यो खी वन हाँ मानून तो डिठो ये चावर तमाम सुठो उन में एक किलो चावर खी कर विकणी छी आो क्वालिटी जो चावर मिले छी उनकी मिसयूज है जो उन चावर के मिसयूज कर चावर के पैं पर्पज ला तो गेन कई विकतई उन में उनके पैसा मिले वरी पैं लो क्वालिटी चावर तहसा मिले छे और जो मिलायण जो जो फेज है ना उन फेज की असा चाहूं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
1: ऑल राइट अक्सर तो कोई अगर बुधा वाने चावर सुठी क्वालिटी वाला तो हमरा तो पचाएं शुरू थी दो पर
0: थिंदो आ कने कने थिंदो आ या तो दिसो ना या तो
1: पचाए तो खेरा मिक्स
0: हां मुझे रिस्पांसिबिलिटी है ना मुझे रिस्पांसिबिलिटी है टू लुक आफ्टर हिम असल माता के चाचो बेल बेलमेंट जेके चंबा अमानत तौर रख रहे प्लीज भी असा चाचो ना अमानत तौर रख रही ना
1: ओके ओके
0: प्लीज में छा थिंदो आ तो सिर्फ सिर्फ असा को लोन वठनो के पर्पस जे लाए तो जदे मा लोन ताके वापस कर छदम ता या प्रॉपर्टी काइंडली मके हैंडओवर करदो
1: ठीक है
0: इन इन के जो अमानत में शुरू में बदनीयत मैं वन सेकंड रिपीट तो क्या आई एम रिपीटिंग दैट पॉइंट फॉर द दोस पर्सन जेकी असा के विच में अगर असा के ज्वाइन किया तो उन्हें की ये खबर पे दी व्हाट काइंड ऑफ टॉपिक इज बीइंग डिस्कस बिटवीन द बाबर एंड सरशेबाज
1: ओके आणि तैयब जो सवाल ते अचूं पे पा
0: तैयब हरमा तैयब जी ने सवाल ते नो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी
1: ओके
0: मिसल सपोर 403 जे अगर ता डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में वेंदो उन जी पनिशमेंट 2 साल है ई अगर ता 403 में उन पनिशमेंट 3 साल आ अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में उन भी 3 साल डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी एंड इन द कंडीशन दैट क्राइम इज बीइंग डन तो डिपेंड करे तो लाजमे बिन साल वी वेंदे 10 साल प्लस लाइफ इम्प्रिजमेंट तीन भी इनकी सजा आए पर अमूमन चाहे 10 साल यो मैजिस्ट्रेट ट्रायल भी है यो सेशन ट्रायल भी है
1: ठीक है अच्छा एक बी असा वॉइस नोट्स इंक्लूड क्या
2: मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो इस मतलब मेरा एक सवाल है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और चीटिंग में क्या फर्क होता है आम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं इसका जवाब दें प्लीज
0: वेरी गुड क्वेश्चन
1: सुठो सवाल अच्छा सवाल किया है जुबेर आपने
0: जी थैंक यू वेरी मच जुबेर इट्स अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड बाय यू चीटिंग Cheating is a kind of deception. It's kind of concealment of the facts for anything. अगर ये समझो तो ठगी करण जैसे धोखो दे कें मानू के यकीन दियारण माना एतरो इंड्यूस कर छण ती इ शे आ वाकई मुझी आ मुखा तू खरीद कर जडे तू आ शे उनकी ना मिसट्रस जो मैं यो बुधा डिसेप्शन चीटिंग ए मिसअप्रोप्रिएशन जो यो आ सिर्फ ए सिर्फ वंस अगेन कमिंग टू द सेम पॉइंट के बदनीयती फ्रॉम द बिगनिंग आ चीटिंग में जी डिसऑनेस्टी आ वो शुरू खाए
1: ओके
0: ही इज इंटेंशन टू डिसीव दैट पर्सन माना बाद में क्रिएट न थो जो मेन्सरी जो एक्सरी जो मेन्सरी इंटेंशन जी असा चाहूं जो मेन्सरी वो स्टार्टिंग में ही क्रिएटेड
1: यस यस
0: ठीक है ना लेटर ऑन मानू छा तो करे तो एक्सरी तो उनसा गड आ पर जो मिसअप्रोप्रिएशन में जी थे वह मेन्सरी तुम बदनीयती शुरू में ना वो लेटर ऑन क्रिएट थी थे मुख्य अगर एक मोबाइल तो मिले रोड से मां खणी छो माना आई हैवन फाउंड दी रियल ओनर मुख्य ना खबर पर पब्लिकेशन भी कराया तो मां पाड़े में अनाउंसमेंट भी कराया तो मां लोकलिटी में न्यूज भी फैलाया तो छा अगर मुझे सर्किल है व्हाट्सएप ते मैसेज भी हलाया तो मां फेसबुक ते एकड़ी वीडियो भी चाड़े तो छा तो हे मोबाइल कैंजो अगर जो भी रियल ओनर हो अचे मुखा वे ठीक है हाँ मुझे लुक आफ्टर कदम केयर कदम पर मोबाइल मुख्य मिलो मुख्य खबर आ मोबाइल बाबर जो पर स्टिल आई एम नॉट गिविंग दैट थिंग टू द बाबर न थो डे आई नो वेयर इज द बाबर लिव वट इज द लोकेशन ऑफ द बाबर इन वेयर प्लेस इन विच प्लेस द बाबर इज वर्किंग
1: सही
0: उनकी सर्विस क्या थी बट स्टिल दैट थिंग आई एम यूजिंग फॉर माई ओन पर्पज दैट थिंग इज कॉल्ड मिस अप्रोप्रिएशन इंटेंशन बाद में क्रिएट तो थे
1: सही
0: चीटिंग में चीटिंग में शुरू में ही तुझो इंटेंशन ही धोखो
1: देना
0: ठीक है ना दैट्स दैट्स डिफरेंस बिटवीन चीटिंग एंड मिस अप्रोप्रिएशन
1: बो सवाल भी असा वटी आयो है प्रोग्राम में शामिल क्यों पाया
3: असलामुअलैकुम सर माय नेम इज अफजल निसार जी तुम्हारा प्रोग्राम बुधी रहा आयो असा जो नंढड़ो सवाल हो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हिसाब से अगर कोई भी मानू जो सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करे तो पो तो जाहिर कानून के मुताबिक उनके का सजा भी दिनी वी थोड़े बारे में असा गाइड कजो तो जो सो उन सजा आहे ऐं असां हुनखे कहिड़े तरीक़े सां सजा ॾियाराए सघूं था।
0: बहुत क्वेश्चन तैयार बि साॻियो
1: क्वेश्चन।
4: सर आई एम मोहम्मद मेदीशा, तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधी रहियासीं। जीअं त तव्हांजो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जे हिसाब सां टॉपिक हले पियो, हुन में हिकिड़ो मुंहिंजो सवाल हुयो त पाकिस्तान पेनल कोड में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जी सज़ा छा आहे, इहो ॿुधाइजो थोरो।
0: सज़ा हिन जे करे पुछनि था पिया त असांजी इहा सोसाइटी में आम जाम शइ आहे, नॉर्मल शइ आहे, माना एज़ यूजुअल बेसिस ते थिए थी पई। सो कोशिश इहो करनि था त अगरि कोई हुननि सां धोखेबाज़ी करे थो या हुनजी अमानत में खाए हुनखे सज़ा कीअं ॾियारे। सो बहितर इहो आहे त सज़ा ॾियण खां बहितर
1: आहे।
0: ॾिसो न, असां लफ़्ज़ लिखंदा आहियूं स्टेट वर्सिस डेड पर्सन या एबीसी पर्सन। अगरि कोई माण्हू क्राइम थो करे न, त उहो इंडिविजुअल सां क्राइम नथो करे, पूरी सोसाइटी सां क्राइम थो करे। त देट इज़ द रीज़न जॾहिं बि असां क्रिमिनल केसिस में लॻंदा आहियूं स्टेट वर्सिस ए बी सी, माना हिन शख़्स हिकु इंसान सां क्राइम न कयो आहे, पूरी रियासत सां क्राइम कयो आहे। छोकी रियासत इज़ अ मदर, छोकी स्टेट हूंदी आहे मदर हूंदी आहे, जो रोल मदर वारो हूंदो आहे की टू प्रोटेक्ट, टू फीड एंड टू गिव शेल्डर टू इट्स इंडिजन जेके माण्हू आहिनि, जेकी हुनजी पब्लिक आहे, जेकी हुनजी आवाम आहे, उन्हनि खे जेको आहे न इहे टई शयूं मुहैया कनि। स्टेट जो कमु इंडिविजुअल सां क्राइम न हूंदो आहे, पूरी स्टेट
1: सां क्राइम हूंदो आहे। सो हिकु कॉलर शामिल था करे वठूं, प्रोग्राम खे कंक्लूड कयूं पिया।
5: अगा मां सवाल इहो कंदुमि, अॼु में बि तव्हां सां सवाल कयो, तकरीबन अधु खां सवाइ अमल थी चुको आहे, वरी बि अर्ज़ु कंदासीं
1: जी।
5: हा त हीउ जेको तव्हांखे मां चयो अॻे हफ़्ते त माना ड्रग्स ऐं आइस भंग वग़ैरह एम्पायर नाके रोड ते हले थी,
1: ठीकु आहे,
5: त हिन ते गवर्नमेंट सिंध पुलिस असांजी ॾाढो हिते मां ॾिसां थो कमकार एॾी तेज़ीअ सां थी करे, जे मवाली या मंशात वारा दर पदर करे छॾिया अथऊं, ॾाढो बहितर था कनि।
1: तव्हां ईअं ई पॉइंट आउट कराईंदा रहंदा कयो, इनशाला ताला कार्रवाई थींदी, मनशात फरोश जेके बि आहिनि इन्हनि खे बसि सज़ा मिलंदी, ठीकु आहे।
5: सरकार मां त माना पकड़ायान बि, पर हिते छो अहिड़ो या एस पी मां सां हुजनि, मां क्राइम वारा अहिड़ा माण्हू पकड़ायान जेके सॼी ज़िंदगी गवर्नमेंट न पकड़े सघी आहे। इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो, उन्हनि जा अखाणा ॾिसां थो, मूंखे जे माना को तंग न करनि त मां गवर्नमेंट सां वॾी हेल्प कयां।
1: तव्हांखे
0: तंग
1: बाबा हिनखे कोई बि न कयो,
0: बेसिकली ही इज़ माना वर्किंग एज़ अ सुपर हीरो। अगरि कोई पंहिंजी सुसाइड ॾिसो, आसमान मो खिलाई मकलू हर टाइम सुपरमैन त न
1: ईंदो,
0: जेके असां इमेजिनरी हिकड़ी दुनिया ठाही आहे, आयरन मैन, सुपरमैन, मार्वल सीरीज,
1: एक्चुअली
0: जेके असां जेके माण्हू हूं, जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था, कयूं था पिया, अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट्रिक्ट कयूं था, बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो, चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं।
1: सुपर हीरो
0: तमामु बेहतर आहे, डू अप्रिशिएट हिम के हुननि इहो जेको आहे न कमु करे
1: अक्सर प्रोग्राम में असांखे पॉइंट आउट करायो, सम्झा पियो प्रोग्राम जे थ्रू जेको
0: आहे शाउट आउट ॾियणु खपे हिननि खे, वेरी ब्रेवो टू ब्रावो जे लाइ असां कमु कंदा आहियूं तमामु। जीअं हाणे अधे वारनि हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले कयो
1: आहे,
0: मां आई हेड्स ऑफ देम, माना मां सल्यूट पेश कंदुमि, सलाम पेश कंदुमि हिननि पुलिस वारनि खे जेके हिन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जी क़ुर्बानी बि ॾियनि था, पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था। मां जे अॻुणे चयुमि त सुपर हीरोज़ मथो न ईंदा
1: आहिनि, सुपर
0: हीरोज़ असांजे अंदरि ई
1: हूंदा।
0: अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लखणी हलनि था, फॉर मी दे आर आयरन मैन, फॉर मी दे आर सुपरमैन, फॉर मी दे आर द बैटमैन। सो मार्वल ऐं डीसी खे ॾिसण न खपे, असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज़ अवेलेबल आहिनि। वॾी तमामु मां अप्रिशिएट कंदुमि हुन पुलिस वारनि खे जेके हिननि जॻहियुनि ते वञी करे असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन्हनि आसिर खां।
1: बिल्कुल शहबाज साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु पुराणी ते पहुतो आहे, इलाही शयूं पंहिंजी रहिजी वयूं आहिनि अञा।
0: वी विल कंटिन्यू इन द
1: लास्ट में कीअं अव्हां असांजे जेका व्यूवर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहो जेका इहा आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे, इन खां बची सघनि।
0: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन,
1: ओके,
0: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो ॾियो था पिया त कोशिश कयो त हुनजा आई विटनेस ज़रूर हुजनि. ठीकु आहे, ऐं आख़िर में इहो चवंदुमि त अगरि सपोज़ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे, पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो, एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो, हुननि जे ख़िलाफ़ तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि

0: अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे, तव्हां वटि वीडियो आहे, तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि, तव्हां वटि व्हाट्सएप कॉल्स आहिनि, अगरि तव्हां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखारियो, मालिक ई ॾेखारियो इहा शइ तव्हांजी आहे, उन खां पोइ तव्हां हिननि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया। त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिश कयो त तव्हां हुनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां, काइंडली ख़यानत न कजो।
1: अच्छा, हिन ते मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां हुननि खे अमानत लाइ रखायूं पिया न, त हू चवंदा आहिनि हीउ ॿियो आहे, असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं, पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं हुननि खे। इहो त असां चऊं न त हू बाक़ाइदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया, अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि, ऐं स्पेशली जेको ट्रस्ट करे तव्हां वटि कुझु रखाए पियो। जी
0: ॾिसो न, तव्हां पाण ई लफ़्ज़ ॿुधायो, सवाल जो जवाब बि तव्हां पाण ॾिनो त अमानत तौर रखा,
1: अमानत तौर।
0: हाणे अगरि हुन मां हिन रुपियो बि अगरि ज़ाया करे छॾियो, रुपियो बि अगरि पंहिंजे मथां इस्तेमालु करे छॾियो, त उहो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ई वञे। सुठो लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न सेम प्लेस।
1: सो अगले प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त, अलाह हाफिज़।
0: थैंक यू वेरी मच।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे बारे जे बेहतरीन करियर ऐं रोशन मुस्तक़बिल जे लाइ सखर जो मशहूर ऐं मञियल इदारो सिराजुद्दीन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सखर पारां नर्सिंग ऐं फिज़ियोथेरेपी जे शोबन में नए सेशन लाइ दाख़िलाउ जो शानदार ऐलान। हाणे पंहिंजे ॿारनि खे बणायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल। 4 सालनि जा डिग्री प्रोग्राम GBSN, GBSM ऐं 5 साल DPD जॾहिं त 2 सालनि जा डिप्लोमा प्रोग्राम LHV, CMW ऐं CNA ऐं ख़ासि ॻाल्हि मुस्तहक़ शागिर्दनि लाइ स्कॉलरशिप्स पिण मौजूद आहिनि, जॾहिं त 2 सालनि जे कोर्सेज में दाख़िलो बिल्कुलु फ्री आहे। सहूलियतूं ऐं मान्यता असां वटि मौजूद आहे। स्टेट ऑफ आर्ट कैंपस, AC क्लासरूम्स, जदीद लेबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल ऐं पिक एंड ड्रॉप जी सहूलियत। ही इदारो सिंध हुकूमत जे हेल्थ डिपार्टमेंट खां मंज़ूर थियल ऐं पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल खां मुकमल तस्लीम थियल आहे। दाख़िला महदूद आहिनि, तंहिं करे अॼु ई राब्तो करियो। एड्रेस: सिराजुद्दीन एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 5, सखर टाउनशिप, मेन बाईपास रोड, सखर। फोन नंबर्स 07156356 42 and 03008311207। छा तव्हां बि पंहिंजो ख़्वाबनि जो घर हिकु अहिड़ी जाइ ते ठाहिण चाहियो था जिते हुजे तहफ़ुज़, जदीद सहूलियतूं ऐं मंज़ूर थियल सिक्योरिटी?
5: त पोइ भली कार हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर में,
4: सखर शिकारपुर रोड ते,
5: डॉक्टर ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी जे बिल्कुल साम्हूं,
4: सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पारां मंज़ूर थियल
5: हिकु शानदार ऐं क़ाबिले एतमाद रिहाइशी मनसूबो।
4: हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
5: रिहाइशी प्लॉट 80, 120, 150 ऐं 200 गज़ जा,
4: ऐं कारोबारी मौक़े लाइक कमर्शियल प्लॉट्स 50 गज ऐं 600 गज।
5: हिते तव्हां खे मिलनि थियूं जदीद सहूलियतूं:
4: साफ़ मिठो पाणी,
5: बिजली, गैस,
4: 24 कलाक सिक्योरिटी,
5: मस्जिद, पार्क, स्कूल, बाउंड्री वॉल, ऐं सभ खां वॾी ॻाल्हि, ही मनसूबो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे वेझो आहे,
4: जेको रिहाइश ऐं सीड़पकारी ॿिन्ही लाइ बहितरीन मौको बणाए थो।
5: अॼु ई पंहिंजे प्लॉट जी बुकिंग करायो,
4: फौरी कब्ज़ो ऐं फौरी रजिस्ट्री।
5: कॉन्टेक्ट
4: 03009317252
5: एंड 03132757860। हुसैनी मंज़िल हाउसिंग स्कीम सखर,
4: तव्हां जे महफ़ूज़ मुस्तक़बिल ऐं बहितरीन इन्वेस्टमेंट जो बहितरीन इंतिखाब। अव्हां जे शहर सखर में होम्योपैथिक में 43 सालनि जो तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर आगा लियाकत अली खान पठाण, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, मरीजनि जो मुआइनो करे रहियो आहे। हर क़िस्म जे आसाबी अमराज, जोड़नि जो सूर, मैदे में जलन, कब्ज़, तेज़ाबियत, गुर्दनि जी पथरी, बवासीर, हाज़मे जी ख़राबी ऐं ॿियनि बीमारियुनि जो बग़ैर ऑपरेशन होम्योपैथिक तरीक़े इलाज मुताबिक़ मरीजनि जो इलाज।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
7: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

जो आवाज ये हैदराबाद 91.6 का सच जो आवाज गीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हमनवा बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए ड्रामा सीरियल जेंटलमैन हफ्ता और इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو.
2: It's 7 PM. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.
4: Kya aap aasabi dard, jodon ki takleef,
3: kamar dard ya patthon ki soojan se pareshan hain?
4: Ab dard ko kahein alvida.
3: Fakiri Dex Ointment ke saath.
4: Ji haan,
3: Fakiri marham banane walon ki fakhriya peshkash.
4: Fakiri Dex Ointment.
3: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुंचाने में मदद देता है.
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद.
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिल एतमाद मयार.
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: सखी।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: दहशतगर्द मारजी वे ऑपरेशन दौरान मजमू तौर मारजी वे खारजी दहशतगर्द जंग चौहट थे वो सिक्योरिटी सर्जन मौजूद पाक फौज FC ए पुलिस जो खारजन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजन कार्रवाई में अजी खारजन के जनम भीड़ो कर वो जबलन में लिखल दहशतगर्द खिलाफ जमीनी ए फजाई कार्रवाई कई पी वन 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शोबान ए बेन कार्रवाई में 102 दहशतगर्द मारजी चुका है। घर वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेस के भेटा पेश। मोहसिन नकवी है त मुल्क में लिखल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कर विंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी नायब सदर JD विंस ए पड़ेही वजीर मार्को रूबियो के ईरान से सिफारती राबता ए गाल जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण की धमकी भी डिनी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है त अमरीकी फौज के मुख्य कतल करण की सूरत में ईरान के धरती तां मिसारण जो चई छो है। फौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करण लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोए ते हटणो पवंदो। शहीद रेबर की मौत जो प्लान वठण कौम जो मुतालबो है पूरो थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तफा खामनाई है त शहीद अगवाणन ए शहरियन जो प्लान वठण जो अहद कयूं था। परडेही वजीर अब्बास राक्षी है त अमरीका सां मायदो करियल बुनियादन ते थी सघे तो। अब्बास राक्षी मौजूदा सूरत हाल ते गाल्हियुनि लाइ ओमान पहुतल।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: संगम देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों के खुशियों को नजर ना लगे किसी की, बहुत दुख देखे इन्होंने,
2: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: तुम नहीं जानती कि वो तुम्हारी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है। सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: इस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6।
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: जी मातहत वलिका अस्पताल एचआईवी पखेड़ जो गढ़ बणजी वही वधीक ब बाड़ियूं एचआईवी में मुब्तला। जाग कॉलोनी वासी नव वरियन की निगरी के एचआईवी की तस्दीक संदस बेणियों अगई एचआईवी में वरतल। मेट्रोविल वाले इलाके में टिन वरियन की निगरी के भी एचआईवी हुण की तस्दीक थी। वालदन जो चवण है धी जो इलाज वलिका अस्पताल में थो। तबियत खराब थे टेस्ट कराई तो एचआईवी पॉजिटिव आई। वलिका अस्पताल 80 बारन में एचआईवी की तस्दीक थी वही। चार मासूम बाड़ा एचआईवी से झेड़ीदे जिंदगी विञाए चुका। बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में आज वधिक 21 दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारजी वियल खारजी दहशतगर्दन जो अघ वधी 64 थी वियो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब पाक फौज एफसी ए पुलिस जो खारजियन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजन कार्रवाई में आज वधिक 21 खारजियन के जन्म भीड़ो कयो वियो। जबलन में लिकियल दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फजाई कार्रवाई कयूं पई वन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शबान ए बेन कार्रवाई में 102 दहशतगर्द मारजी चुका। घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो तो मुल्क में लिकियल समूरन दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प के नायब सदर जेडी वेंस ए परडे वजीर मार्को रुबियो के ईरान से सिफारती राबता ए गाल जारी रखने की हिदायत। पान ते हमले की सूरत में ईरान के धरती तां मिसरण की धमकी भी दिनी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प है अमरीकी फौज के मुख्य कतल करने की सूरत में ईरान के धरती तां मिसरण जो चई छो है। फौज ईरान ते 1000 मिसाइल फायर करने लाय तैयार है। तेहरान के साजिश तां पोते हटनो पवंदो। शहीद रेपर की मौत जो प्लान वठन कौम जो मुतालबो है पूरा थियण घुर्जे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई चयो है त शहीद अगवाणन ए शहरियन जो प्लान वठन जो अहद कयूं था। वडे वजीर अब्बास राक्षी चयो है त अमरीका सां मुआहिदो गडियल बुनियादन ते थी सघे थो। अब्बास राक्षी मौजूदा सूरतहाल ते ॻाल्हियुनि लाइ ओमान पहुतल। छिकताण में वाद वाद अमरीका जहाज प्रताप बबेड़ा ईरान वेझो मुकरर करे छड़िया। यूएसएस अब्राहम ए यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू एच बुश के ईरान वेझो मुकरर कयो वियो। सेंटकॉम मूजिब अमरीका जा 20 खां वधीक जंगी बेड़ा विच ओभर जे समुंड में गश्त करे रहिया आहिनि। ईरानी परडे वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकरी चयो आहे त ईरानी फौज दुश्मन जी चुर पुर ते नज़र आहे। फौज मुल्की सलामती ऐं अवाम जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाए रही आहे। ईरानी क़ौम खे पंहिंजी फौज ते फ़ख़्रु आहे। ईरान अमरीकी हमलनि में 17 शहरियुनि जे शहीद थियण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे सिहत वारी वज़ारत मूजिब अमरीकी हमलनि में शहीद थींदड़नि में हिकु औरत बि शामिल आहे। 8 ऐं जुलाई ते अमरीकी हमलनि में 115 शहरी ज़ख़्मी बि थिया आहिनि। अमरीका बंदर अब्बास समेत ईरान जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते हमला कया हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर फैसल बिन फरहान सां फोन ते राबतो। हिते जी सूरतहाल अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि ऐं इस्लामाबाद यादाश्त नामे ते ॻाल्हियूं। ॿिन्ही अॻवाणनि अमरीका ऐं ईरान जी ताज़ी सूरतहाल ते ॻणितीअ जो इज़हार कंदे छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशूं जारी रखण ते इतफ़ाक़ कयो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार जो मालदीव जे परडे॒ही वज़ीर सां बि फोन ते राबतो। ॿिनि तरफ़नि लाॻापनि ऐं ख़िते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल कई वई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर ना रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब कर

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।

0: मुझे बर्बाद कर देगी।
1: तो अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछा लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।

0: से तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
0: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना गेट लॉस्ट। एक बार कह देती कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

0: देखिए मेरा रब वारिस 7 मार्च से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: screeno.
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: जेपडे वजीर फैसल बिन फरहान से फोन ते राबतो ते जी सूरत हाल अमरीका ईरान गाल इस्लामाबाद यादाश नामे ते गालू बिन्हीं अखाणन अमरीका ईरान की ताजी सूरत हाल से घंटे जो इजहार कन्दे छिकताण के खात्मे लाए सिफारती कोशिशों जारी रखने ते इतफाक कियो। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो मालदीव जेपडे वजीर से भी फोन ते राबतो वे तरफन लागापन फिफ्टे की सूरत हाल से गाल्ह बोल कई वही।

कराची बार एसोसिएशन के चूंडन में आमिर नवाज वड़ाइच मैदान मारे वरतो। आमिर नवाज वड़ाइच 2063 वोट खणी सदर चूंजी वो। जीएम कोराई 648 वोट खणी सको। अजीज गोरी 893 वोट खणी नायब सदर चूंजी वो। अरशद शेर 1370 वोट खणी कराची बार एसोसिएशन जो सेक्रेटरी थी वो।

सिंध में एचआईवी केसेस में खतरनाक हद ताईं वाधा थो देरो ऐं गंबट खां पोइ कराची में सीसी जे मातहत वलीका अस्पताल एचआईवी पखेड़ जो घर बणिजी वई। वधीक ॿ ॿारियूं एचआईवी में मुबतला जा कॉलोनी वासी नव वरियनि जी निगरी खे एचआईवी जी तसदीक। संदसि ॿ मासूम भाइर अॻई एचआईवी में वरितल। मेठो विलेर वारे इलाइक़े जे टिन वरियनि जी निगरी खे बि एचआईवी हुअण जी तसदीक थी। वालदनि जो चवण आहे त धीउ जो इलाज वलीक अस्पताल में थियो। तबियत ख़राब थियण ते टेस्ट कराई त एचआईवी पॉज़िटिव आई। वलीक अस्पताल जे 80 ॿारनि में एचआईवी जी तसदीक थी वई। चार मासूम ॿारा एचआईवी सां जहिड़ींदे ज़िंदगियूं विञाए चुका। कक्षापुर भरिसां बीएस फीडर खे आरडी 140 वटां लॻल गारे सवें घर बोड़े छॾिया। हज़ार एकड़नि ते बीठल फसल बि पाणी हेठि। ॻोठ लिकाउ बंगवार वटां गारो पवण सबब केतिरा ई ॻोठ ऐं हज़ारे एकड़नि ते बीठल सारियालो फसल भुॼी वियो। 200 फुट ताईं वधी वियल गारो केतिरा ई कलाक हुजण बावजूद वधजी न सघियो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में ज़रई पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। चंडो ग़ुलाम हैदर में वाह में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो बदीन रोड ते धरणो। मुबारकपुर जे मूसा अलाहाबाद शाख में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो मुज़ाहिरो। निंदू में कढण सब डिवीजन जे वाहनि में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो एहतजाज। पाणी फराहम करण जो मुतालबो। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में कणक ज़खीरो कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवायूं। केतिरा ई गोदाम सील। कणक जूं हज़ारे बोरियूं हथ। बान सईदाबाद जे मुख़्तलिफ़ गोदामनि ते छापा। गैर कानूनी तौर ज़खीरो कयल कणक जूं 5,000 बोरियूं हथ। टे गोदाम सील। खोड़ा में बि कार्रवायूं करे 10 गोदाम सील कया विया। मदेजी में बि कणक जे गोदामनि ते छापा। केतिरा ई गोदाम ऐं दुकान सील। कणक जूं ज़खीरो कयल हज़ारे बोरियूं हथ। शहदादकोट, पनवा, किल ऐं सिटाजा में बि गोदामनि में पयल कणक जूं हज़ारे बोरियूं ज़ब्त। साढ़ 8 अरब रूपयनि जी करप्शन केस में गिरफ़्तार ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त सिंध हुकूमत पारां एतराज़ न करण बावजूद रद्द। ॿुधणी दौरान सिंध हुकूमत पारां स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश थी चयो त ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत थियण ते सिंध हुकूमत खे को एतराज़ नाहे। जवाबदार जे वकील चयो त एडवांस तौर सामान ख़रीद करे सघिजे थो। शर्त ताईं ज़ाब्ता बि पूरा कया विया हुआ। साब्ती जी ज़िमेवारी प्रोसिक्यूशन आहे। अदालत सिंध हुकूमत पारां एतराज़ न करण बावजूद ज़मीर अब्बासी जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी। बीआरटी येलो लाइन जे अॻूणे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी खे एंटी करप्शन लाहौर मां गिरफ़्तार कयो हो। तरी मीरवा भरिसां पसंद पणे जी ख़्वाहिश ज़ाहिर कंदड़ नारी मुबैना तौर क़तल। ॻोठा जी गुलशेर जोगी में 25 सालनि जी नाज़िम ख़ातून जोगी पुरस्कार नमूने फौत थी। इतलाह ते पुलिस पहुची नारीअ जो मर्ज़ ज़रूरी कार्रवाई लाइ अस्पताल मुंतकिल करे छॾियो। नारी जे वाले ते ईसन जोगी चयो त धीउ दम ऐं सहके जी बीमारी सबब फोत थी वई आहे। पुलिस जो चवण आहे त नारी पसंद जी शादी करण चाहे पई। खेसि तशदुद करे क़तल कयो वियो आहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अचण खां पोइ वधीक कार्रवाई कई वेंदी। हैदराबाद जे होसड़ी वारे इलाइक़े में बि घर मां औरत जो लाश हथ। सीता नाले औरत जो लाश अस्पताल मुंतकिल। वारिसनि जो चवण आहे त सीता आपघात कयो आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

मोहब्बत चांद होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: दर्द दे बेदर्दी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: चिन्मय दहशतगर्दन लोहारी अंतरन ए सदन सहूलतकारन खिलाफ इंटेलिजेंस ते बधल टारगेटेड ऑपरेशन तेज करण जो फैसलो। वडे वजीर बहादुर शाह सूबे में अमन अमान बरकरार रखण लाइ इदारन के फ्री हैंड डेई छडियो। वडे वजीर जी सदारत हेठ सिक्योरिटी सूरतयाल जो जायजो वठण लाइ आला सतही इजलास थियो। घरू वजीर ज़ाल हसन लंजा, कोर कमांडर कराची, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध ए बियन लागापियल कानून लागू कदड़ इदारन के सरबराहन शिरकत कई। मौजूदा सिक्योरिटी सूरतयाल दहशतगर्दी के खात्मे लाए जारी कोशिशन ए सूबे में अमन ए इस्तेकाम के बरकरार रखने लाए खयान कदमन बाबत ब्रीफिंग डिनी वही। इजलास में उभरंदड़ सिक्योरिटी चैलेंजन के मुंह डेण लाए तैयारी ए जवाबी हिकमत अमली जो पिण जायजो वरतो वियो। वडे वजीर पारा लागापियल इदारन के अवाम जो तहफुज यकीनी बनाण, अमन बरकरार रखण ए रियासत की रिट के मजबूत करण लाए एक बे सा वेझे राबते में रहण की हिदायत। बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन शबान में अज वधीक 21 दहशतगर्द मारजी विया। ऑपरेशन दौरान मजमूई तौर मारजी वियल खारजी दहशतगर्दन जो अंग वधीक 64 थी वियो। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब पाक फौज, एफसी ए पुलिस जो खारजन खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजन कार्रवाई में अज वधीक 21 खारजन के जन्म भीड़ो कयो वियो। जबलन में लिखियल दहशतगर्दन खिलाफ जमीनी ए फिजाई कार्रवाई कयूं पई वन। 5 जुलाई का जारी ऑपरेशन शबान ए बियन कार्रवाई में 102 दहशतगर्द मारजी चुका। घर वजीर मोहसिन नकवी पारा कामयाब ऑपरेशन ते फोर्सेज के भेटा पेश। मोहसिन नकवी चयो त मुल्क में लिखियल समूरन दहशतगर्द खत्म कयो वेंदो।